0: क्योंकि हमारे नेटवर्किंग इवेंट्स काफी कम होते हैं हमारी कम्युनिटी में. तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, आप आए. पाकिस्तानी टीम जो प्रोजेक्ट के लिहाज से अगर क्वेश्चन नहीं भी है, अगर नेटवर्किंग के लिए भी आना है तो वो भी ज्वाइन करें.
1: जनाब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ बिजनेसेस, डिफरेंट बिजनेसेस भी होंगे, बहुत लोग होंगे, तो आप नेटवर्किंग के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए भी जो है वहाँ जा सकते हैं. जरूरी नहीं इस प्रोजेक्ट के वाले से जाएं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर लें 6478241485. बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपसे बात करते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच.
1: अल्लाह हाफिज. नंबर नोट कीजिए नजमा मलिक साहबा का, अभी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए 6478241485. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM, 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm सुन सकते हैं. हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV. रियल सेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तला भट्टी 6472957861. घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए. अपना ईमेल रेसिपी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे. जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी. डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए तला भट्टी 6472957861 6472957861. लिए चलेंगे आपको न्यूज की तरफ. पेश करें जनाब जुबैर उद्दीन साहब.
2: You're listening to CMR FM 101.3.
3: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने.
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
3: न्यूज के लिए हम तावन देते हैं आईकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन 3 खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आईकॉन इवेंट स्पेस के साथ. मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500. इट्स 4374252500. आईकॉन इवेंट स्पेस. न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है. अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात मुअत्तल होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्हें गलत और बेबुनियाद करार दिया है. एक बयान में उनका कहना था कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है और गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान भी मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं रुका, जबकि आज भी दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगु हुई है. ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है. ताहम उन्होंने मुहिदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरीके से मुहिदा किया जाए. आप ये मामला 47 साल से जारी रखे हुए हैं और इसे मजीद जारी रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. उधर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में ईरानी जौहरी प्रोग्राम के वो पहलू भी शामिल हैं जिसका वो एक महीना या एक साल कबल तक जिक्र करने से भी इनकार कर रहा था. उन्होंने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल और कई महीने लग सकते हैं, जबकि आबनाए हुरमुज की बहाली की सूरत में अमरीका की जानिब से पाबंदियों में नरमी की कोई पेशकश नहीं की गई. ईरान के हवाले से उनका कहना था कि उन्हें अपने मुल्क में अफजूदगी की सरगर्मियों को तवील मुद्दत तक महदूद या ख़त्म करने के हवाले से मुज़ाकरात पर इत्तेफाक करना होगा. अमरीकी वजीर खारजा ने सेनेट कमेटी को बताया कि मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनई जिंदा हैं और सरगर्मियों में ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं. वाज़ह रहे कि मुश्तबा खामनई को 20 मार्च के बाद से अवामी सतह पर नहीं देखा गया है. वो अमरीकी और इसराइली हमलों की पहली लहर में जख्मी हुए थे, जबकि उनके वालिद अली खामनई इस हमले में मारे गए थे. उधर ईरानी खातिमुल अंबिया के ब्रिगेडियर जनरल असदी ने अमरीका के साथ दोबारा जंग को नागुजीर करार दे दिया है. उनका कहना था कि बार बार कह चुके हैं कि हमने अभी मुकम्मल सलाहियतें जाहिर नहीं की, हम जंग के लिए तैयार हैं और हमें इससे कोई मसला नहीं है. दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब के तर्जुमा

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बोवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन कॉल 9055147877। वही जायका, वही लजत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
5: जी हाँ, पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है रिजवे प्लाजा में और यूनिट 30 है इसका, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू। जरूर आप तशरीफ ले जाइए। अच्छा ना, पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह निहार मुंह, जीरा और मेथी दाने का पानी पीने का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। माहिरीन कहते हैं ये मशरूबात बराह रास्त चर्बी नहीं पिघलाते, बल्कि जिस्म के कुदरती निज़ाम को बेहतर बनाकर वजन कम करने में मदद करते हैं। माहिरीन इमराज मैदा के मुताबिक जीरे का पानी हाजमा बेहतर बनाने, अफारा कम करने और जिस्मानी मेटाबोलिज्म को सहारा देने में मददगार साबित होता है, जिसके नतीजे में पेट के फूलने का एहसास कम होता है और चर्बी के इस्तेमाल का अमल जो है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा मेथी दाना जो है वो भूख पर काबू पाने, खून में शक्कर की सतह मतवाजन रखने, डायबिटीज़ वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा भी यकीन होता होगा, चर्बी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और आंतों की सेहत में मुआवन समेत जो है वो समझा जाता है। मरीन के मुताबिक मेथी दाने की ये खसूसियत वजन में कमी और पेट की चर्बी कम करने में बिलवास्ता मदद दे सकती है। गजाई माहरीन कहते हैं अगर मकसद भूख कम करना और खून में शक्कर को मतवाजन रखना तो मेथी दाने का पानी निस्बतन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, जबकि जीरे का पानी हाजमे के मसाइल में बेहतर नतीजे देता है। सेहत के माहरीन ने लेकिन यह भी खबरदार किया है कि जो हमला खवातीन हैं, मैदे की हसासियत रखने वाले अफराद हैं और ज़ियाबीतिस के मरीज, इन मशरूबात के इस्तेमाल से पहले तिबी मशवरा ज़रूर कर लें। माहिरीन कहते हैं कि जीरा और मेथी दाना दोनों के फ़ायदे तभी मौसर हो सकते हैं जब इन्हें मुतवाजन ग़िज़ा और बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी के साथ इस्तेमाल किया जाए। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: Assalamualaikum.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
2: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमे आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमे मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
3: सिंस 1993 MWC फूड बैंक्स हैव प्रोवाइडेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद नॉन-पेरिशेबल फूड, हलाल मीट एंड एसेंशियल हाउसहोल्ड आइटम्स। ओवर 10,000 फैमिलीज अक्रॉस कनाडा रिलाई ऑन MWC फूड बैंक्स टू सप्लीमेंट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। वी सर्व इन Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities, charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी,
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001। लाइसेंस नंबर 12374।
3: SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज। इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेपे।
4: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
5: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, निहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, Barbecue Tonight Restaurant, 9052680088। It's 9052680088, Highway 10 or Dundas intersection, Mississauga.
6: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
7: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
8: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। स्टूडियोज में रابطے के नंबर 416-593-0003। इस वक्त पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल जमान साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस उनसे करते हैं और फिर लेते हैं आपकी लाइव कॉल्स। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब, बूंद बूंद को तरसते कराची के अवाम के लिए अब इंतजार शायद और लंबा हो गया है। केफ और मनसूबा मजीद ताखिर का शिकार होने के बाद कहते हैं 2029 में मुकम्मल होने का इम्कान है। 12 साल पहले यह मनसूबा 25 अरब रुपए में मुकम्मल हो जाता, अब कहते हैं इसकी लागत 200 अरब रुपए के करीब है, शायद उससे भी ज्यादा हो चुकी है। कई डेडलाइन गुजरने के बावजूद ये मनसूबा जूं का तुम क्यों है? क्या मीडिया में ला के मतलब सिंध को मतलब उस पर तनकीद इसका मामला है, या ओरिजिनली इसके ऊपर काम के लिए उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था?
9: देखिए, ये एक खाली यही प्रोजेक्ट नहीं है। आप क्या देख लें कि हमने क्या डैम बना लिए, क्या हमने जो इम्पोर्टेंट सड़कें थी वो बना ली, क्या हमने इम्पोर्टेंट अंडर पासिस, क्या हमने जो हमारी क्या थी वो जो
8: यूनिवर्सिटी
9: नाम दिया हुआ था एक रेलवे लाइन को, वो बदल दिए, वो पता नहीं क्या उसका नाम रखा हुआ था जो कराची से उधर गिलगित तक बननी थी।
8: okay.
9: ये मतलब ये कि हमने तो हर इम्पोर्टेंट क्या सी पैक जो है ना वो बन गया, 2025 का मंसूबा था, 2013 के अंदर शुरू हुआ, 2025 के अंदर जो है ना उसके सम्राट तो देखे 26 भी गुजर गया। तो कहां उसके तहत जो है ना वो दो राहदारियां बननी थी, उसके तहत इकोनॉमिक जोन बनने थे, उसके तहत ये नवाशी साहब का 2013 का जो विजन था, आज उन्होंने इसका जिक्र भी किया उन्होंने खिताब करते हुए कि ना वो क्या कहते हैं अपना जो जितने मेगावाट 40,000 मेगावाट बिजली लगाने का उन्होंने मतलब कहा कि हमने लोड शेडिंग, उन्होंने कहा ये मिस्टेक ये गलती लोग कहते हैं कि तब 20-20 घंटे की जो है ना वो मतलब 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो उसको खत्म भी किया और उसके अलावा जो है ना कैपेसिटी बढ़ाई भी कि इंडस्ट्री लगेगी सब कुछ होगा, लेकिन ना वो इंडस्ट्री लगी ना वो इन्वेस्टमेंट आई ना हालात जो है वो उस तरीके से बने। तो हमने तो मतलब ये कि हर मंसूबे के साथ खाली एक K4 की कहानी है, बात थोड़ी लंबी होगी, असल तो मैं K4 के ऊपर ही थोड़ा फोकस करना चाहिए था, क्योंकि देखें कराची जो है ये K4 मेरे ख्याल से मतलब वो उसका नाम रखा हुआ है केंजर झील की वजह से, इस वजह से उसको K4 मंसूबा जो है ना वो कहा जाता है। बुनियादी तौर से केंजर झील का पानी जो है वो कराची वालों तक पहुंचाना है, और यानी कि आप वही देखने के समुद्र का पानी कराची वालों तक पहुंचाना या केंजर झील का पानी कराची वालों तक पहुंचाना। वो कहते हैं कि कराची वाले उनका मतलब ये हाल ये है कि खिड़की खोले तो समुद्र नजर आ रहा होता है, नलका खोले तो पानी नजर नहीं आ रहा होता। तो ये जो है ना वो बेचारे कराची वालों का हाल है कि वो पानी के सर पे बैठ के पानी के बिल्कुल साहिल पे होते हुए साहिल समुद्र पर होते हुए भी जो है ना वो बेचारे पानी जो है वो तरस रहे। तो केंजर झील को छोड़ें, 200 अरब रुपए को छोड़ें, अभी भी वाटर सैनिटाइजेशन को प्लांट जो है ना अगर लग सकता है मेरे ख्याल से इससे कम लागत के अंदर कराची से बिल्कुल जो है ना मतलब ये कि वो उसको कनेक्ट करना उसको वहां तक जो है ना, तो अल्टरनेट कोई जो है ना वो ढूंढ के वो कर लें, जरूरी नहीं है कि एक चीज आपसे नहीं बन रही और उसकी लागत भी इतनी ज्यादा हो चुकी है तो आपने उसी के पीछे जो है ना वो पड़े रहना है, उसको बाद के लिए जो है ना वो छोड़ दें या देख लें। फिलहाल जो है ना जो कराची वालों की जरूरत है उसको पूरा करें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर कम से कम जो एक और मंसूबा था कि नया शहर जो है ना वो आबाद करने का, कि क्वेटा और कराची और हैदराबाद इनके दरमियान में जो है ना वो एक बड़ा शहर जो है ना वो आबाद किया जाए, जहाँ से कराची की आबादी जो है उसको मुंतकिल किया जाए और कराची के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले कराची की जो आबादी है उसको थोड़ा कम किया जाए।
8: वेरी राइट। अच्छा, मंशियात के केस में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस हाशिम काकड़, ANF के अहलकार से पूछा क्या आपने कभी चर्स पी है, उसने जवाब दिया नहीं जनाब मैंने तो कभी चर्स नहीं पी, तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि चर्स नहीं पी इसलिए आप में एहसास भी नहीं है। एक इंतहाई संजीदा केस में इस तरह के गैर संजीदा रिमार्क्स क्या जजेस को पास करने चाहिए, क्या बैकग्राउंड क्यों किया उन्होंने ये पास?
9: जी देखिए वो मंशियात का केस और चर्स जो है ना उसके बारे में ज्यादा यही मतलब बात खाली चर्च के बारे में तो नहीं लेकिन जितने भी नशे हैं उनके बारे में यही कि वो करने के बाद जो है ना जरा इंसान थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और जो है चीजें ज्यादा महसूस करने लग जाता है और जो अंदर का सच है वो निकलने लग जाता है। इस तरह की बातें जो है ना वो ड्रग्स के बारे में और इन चीजों के बारे में मशहूर है, तो उस हवाले से जो है ना मतलब वो केस का थोड़ा बैकग्राउंड तो ये था कि थोड़ी वो सरजनिश कर रहे थे ANF को काम की, क्योंकि इस केस के अंदर उनका जो जो ANF के जो वकील थे उनका केस बड़ा जो है ना वो वीक था। जिस तरीके से वो घर के अंदर गए और वहां पे जाके उन्होंने मंशियात खुद रखी, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो जो दूसरे तरफ के वकील थे जिनके ऊपर इल्जाम था मुलजिमा जो थी उन्होंने घर की फुटेज भी जो है ना वो पेश कर दी, तो उसको उन्होंने खड़े को मौके के ऊपर जो है ना ANF एहलकार ने जो है ना उसको डिनाई कर दिया। तो कुछ लिंक भी था कि उस बताई बात है हम ये तो नहीं जानते कोर्ट के अंदर उस वक्त जो है ना मतलब सारी प्रोसीडिंग, तो एक जुमला खाली निकाल के हम समझेंगे जी बहुत कुछ गैर संजीदा। बाहर जो जजेस हैं वो भी इंसान होते हैं, बाजू का टेंस माहौल
8: मजाक आप करेंगे बस अच्छा ठीक
9: है। हाँ मतलब जो उस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो रहते हैं थोड़ा मूड को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, उसका कम से कम उनकी उनकी केस की जजमेंट के ऊपर या उसके ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जो है ना वो ठीक है कि बाज़ का मिजाज आपका ऐसा होता है, तबीयत आपकी ऐसी होती है, हर एक के मुख्य मिजाज है, कुछ जो है वो बड़ी संजीदा चीज के अंदर से भी जो है ना कोई मजाक का पहलू निकाल लेते हैं और कुछ जो है वो बड़ी मजाया सिचुएशन हो उसको भी जो है ना बड़ा सीरियसली जो है ना वो गुजार देते हैं अपने मिजाज और तबीयत भी होती है।
8: اچھا منگل کے دن عمران خان سے ملاقات کا دن ہوتا ہے, وزیر اعلی کے پی سہیل افریدی صاحب اور علیمہ خان صاحب آج پھر جلدہ جیل کے باہر تھیں اور ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر بانی سے ملاقات تک خیبر پختونخوا بجٹ پاس نہ کرنا, یہ علیمہ خان نے سہیل افریدی کو تنبیہ کی ہے. تو بانی کے نئے پیغام تک میں ہی وزیر اعلی رہوں گا, سہیل افریدی کی گفتگو. عمران خان تقریباً میرے خیال دو سال سے زیادہ ہی ہو گیا, تین سال سے جیل میں ہیں, ہر سال بجا رہتا ہے, پاس بھی ہو جاتا ہے, تو پھر ایسا ضد ہی کیوں کرنی جسے آپ پورا نہ کر سکیں گے؟ تو ممکن نہیں ہے, بجٹ تو عوام کے لیے ضروری ہے, پاس تو اس کو ہونا ہی ہوگا, ادروائز تو معاملات رک جائیں گے.
9: جی بالکل آپ نے درست کہا, کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ صرف بانی کا معاملہ نہیں ہے, جیل کا معاملہ نہیں ہے, ملاقات کا معاملہ نہیں ہے, جو بجٹ ہے وہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. بجٹ کے بغیر صوبہ نہیں چل سکتا, بجٹ سے اور بہت سارے معاملہ جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں آپ کے, تو پورے صوبے کو جو ہے نا وہ آپ ایک کہہ لیں نا کہ ایک قسم سے یرغمال بنا کے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریاست کو جھکا لیں گے, آپ اپنی جو ہے نا وہ بات منوا لیں گے, تو پھر جو ہے نا وہ پھر تو عمران خان صاحب, عمران خان صاحب کیا میں تو کہتا ہوں کہ پھر تو کوئی لیڈر جو ہے نا وہ جیل میں رہ نہیں سکتا, پھر نہ آپ بلاول کو پکڑ سکتے ہیں, نہ آپ زرداری کو پکڑ سکتے ہیں, نہ مریم کو پکڑ سکتے ہیں, نہ نواز شریف کو پکڑ سکتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, تو مطلب یہ کہ پھر تو جو ہے نا وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ کہے گا کہ جی ہم تو اس طریقے سے اپنے لیڈر کو جو ہے نا وہ آزاد کروا لیتے ہیں. ہاں آپ کی جدوجہد, آپ کی اسٹرگل جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر, آپ ہر ہفتے آتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہر ہفتے اپنی ساری ایکٹیویٹی سارے معاملہ چھوڑ کے ایک دن کے لیے جو ہے نا وہ آتا ہے, مطلب سوری ٹو سے دس ورڈ, کے آتا ہے, ذلیل ہوتا ہے اور ساری رات جو ہے وہ وہاں پہ گزار کے اگلے دن صبح اسی منہ کے ساتھ جو ہے نا وہ واپس چلے جاتا ہے, اسی منہ کے ساتھ اگلے ہفتے دوبارہ, مطلب لیکن ایک کہتے ہیں ہیو سم ڈگنیٹی, تو اپنی تھوڑی سی جو ہے نا وہ عزت رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں آپ کو ایک دفعہ ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے, آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے, ہاں ترلا منت, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ترلا منت ڈالنے
8: طریقہ ہے کوئی,
9: ہاں مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ کے جو ہے نا مطلب کہ تعلقات بہتر, حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے, مداخلت کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے نا, اور یہ ہو رہی ہیں باتیں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ سہیل افریدی کی جو ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی کے ساتھ وہ اس کا حصہ ہے, پھر یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو ہے نا وہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے سابق آرمی چیف کی, یہ باتیں ایسی جو ہے وہ نکل کے جو ہے نا وہ سامنے نہیں آتی, اور بہت مطلب بڑی خبر ہوتی ہے, یعنی جو صحافی ہیں جنہوں نے خبر دیا وہ اپنی خبر پہ ابھی بھی اسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اس سے جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور وہ خبریں بھی کسی کے تھرو ہی جو ہے نا وہ آبویسلی اس طرح کی خبریں لگوائی جاتی
8: ہیں.
9: تو آپ اپنے معاملہ جو ہے وہاں پہ سیٹ کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں, جہاں سے جو ہے نا فرق پڑے گا, یا اسٹریٹجی جو ہے اپنی چینج کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ ہر ہفتے ایک وہی پروسیس جو ہے نا وہ دہراتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں.
8: اچھا جناب, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا کہ دعا ہے ایک فیلڈ مارشل امن کی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں, چاہتے ہیں پاکستان دفاعی اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو, یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے, بلاول صاحب کا یہ بیان تھا. زرداری صاحب بھی اس سے پہلے فوج کے ہاتھ مضبوط کرنے کا بیان دے چکے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ریلیف کے لیے بیانات دے رہی ہے, یا ایک جسٹ گڈ جیسچر ہے, یا واقعی اسی بات کو وہ یقین کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں؟
9: نہیں لیکن یہ گڈ جیسٹر, میں مطلب آبویسلی اتنی دیر سیاست کو دیکھنے کے بعد کون سے گڈ جیسٹر اور کون سے جو ہے نا وہ معاملات, دیکھیں گلگت بلتستان کا الیکشن ہے, سینسیٹیو صوبہ ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ معاملات, بھارت کے ساتھ پھر وہ بھی زیر جو ہے نا وہ بحث رہتا ہے, مطلب اس کے بارڈرز کے حوالے سے. پھر آپ کو یاد ہوگا ابھی تقریباً کچھ 6 مہینے سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ مطلب کہ فوج تعینات کرنی پڑ گئی تھی, وہاں پہ کچھ ایتھنک جو معاملات ہیں اس میں کافی زیادہ جو ہے نا مطلب کہ وہ آ گیا تھا, پھر اور اس حوالے سے پولیٹیکل حوالوں سے انسٹیبلٹی کے حوالے سے اور بہت سارے وہاں پہ ایشوز ہیں. ابھی نواز شریف صاحب نے ذکر کیا کہ 20-20 گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ یا لائٹ نہیں آتی, تو مطلب وہاں کے اپنے بھی جو ہے نا صوبے کے ایشوز ہیں, وہاں پہ اسٹرکچر کے ایشوز ہیں, روڈ اسٹرکچر کے, ڈیولپمنٹ کے, لائلٹی کے مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ این ایف سی سے ہمیں جو ہے نا وہ حصہ ہمارا ملنا چاہیے. پھر جو ہے نا جب آپ نے اس کو, جس طرح آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں غالباً صدر زرداری نے باقاعدہ اس کو جو ہے نا مطلب یہ صوبے کا جو ہے نا وہ درجہ دے دیا تھا, تو اگر صوبہ جو ہے نا وہ آپ نے درجہ دے دیا اور اب آپ اپنی کتابوں کے اندر پڑھا رہے ہیں کہ پاکستان کے 4 نہیں بلکہ 5 صوبے ہیں, تو پھر اس 5ویں صوبے کو جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں اس کی ریپرزینٹیشن کہاں پہ ہے, اس کو جو ہے نا وہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کریں, پھر اس کو آپ اس کے حقوق سارے دیں, اس کو بھی اس کا جو ہے نا وہ حصہ دیں, وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو, وہ 40 سیٹوں کے ساتھ جو ہے نا مطلب یہ کہ پورا اپنا صوبہ جو ہے نا وہ چلائیں اور ان کی کوئی ریپرزینٹیشن نہ ہو, तो बहरहाल मेरे ख्याल से कि जो ये पीपल्स पार्टी की मूव है वो बड़ा मतलब ये समझते हैं इसको कि हम अगर जो है ना वो गुड बुक में जो है ना वो आएंगे और इन मामला को जो है ना वो सामने रखेंगे और इस तरह के बयान जो है ना वो देंगे
8: तो हो सकता है कि हम भी जनाब नवाज शरीफ साहब आज गिलगित एक दिन के दौरा था, बड़े अरसे बाद जलसे से शायद उन्होंने इस तरह से खिताब किया और फिर सवाल वही कि हम होते तो ये हो जाता, मुझे क्यों निकाला। 9 साल बाद उन्होंने जो है वहाँ वही सवाल फिर पूछ लिया और आवाम से उन्होंने शिकवा भी किया ये बात, तो क्या नवाज शरीफ साहब का शिकवा दुरुस्त है और क्या आवाम ने भी अपने लीडर्स के इकतदार की हिफाजत के लिए कोई मेहनत तगदो जस्तजुद और जद्दोजहद नहीं की? क्वेश्चन वहीं खड़ा हुआ है।
9: देखिए आपने जो है ना वो जो ऐड किया बीच में, देखिए उन्होंने बिल्कुल उन्होंने मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि उन्होंने बहुत सारे जो है ना मतलब कि वो मामला आवाम के सामने रखे हैं कि अगर हम होते और इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पहले भी जिक्र किया ना कि देखिए सियासतदानों को अगर मौका दिया जाता और उनकी पॉलिसीज को जो है ना वो इस तरीके से बीच में ना रोक दिया जाता। देखिए हर हुकूमत कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लेके, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम ये रही है कि हर हुकूमत ने 5 साल से आगे का सोचा है, अगर किसी ने 5 साल से आगे का सोच लिया तो उसको रहने दिया गया, तो कम से कम जो मौशी पॉलिसीज हैं उनको जो है ना उनका तसलसल बहुत जरूरी था। लोग नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को जी पुल और सड़कों का बड़ा शौक है, अच्छा जी उसमें से कमीशन खाया जाता है, लेकिन आप ये देखें कि उससे जो है ना वो तरक्की की जो लेवल है वो कहां तक जो है ना वो चला जाता है। अब आज आप चाइना की जब बात करते हैं, चाइना की तरक्की की बात करते हैं, तो दो चीजें जो है ना वो मतलब के सामने रखी जाती है, एक उनकी इंडस्ट्री और एक उनकी पुल और सड़कें, कि उन्होंने कोई जगह जो है ना वो नहीं छोड़ी जहां पे उन्होंने पुल और सड़कें ना बना दी हो, अंडर पासिस ना बना दी हो, उन्होंने टनल ना बना दी हो, उन्होंने रेलवे लाइन ना वहां तक पहुंचा दी हो, और यही चीजें हैं जो आपकी जब आपकी मूवमेंट होगी, जब सड़कें वहां पर अच्छी बनी हुई होगी, आज आप पास को देख लें कि वहां से सड़क बनी हुई है तो वहां से ट्रक जो है ना वो चलता है जो आपके कराची पोर्ट के ऊपर आके और आपकी ग्वादर पोर्ट के ऊपर आके जो है ना वो सामान को वापस, तो ये अगर ना हो तो आपके पास जो है ना वो क्या ऑप्शन है। तो मजाक की हद तक जो है ना वो बातें और हैं, लेकिन सीरियस ऑन अ सीरियस नोट ये वाकई ही मतलब उनका विजन था और उनके विजन के मुताबिक मतलब चले हम पास में नहीं जाते कि अगर मतलब कि वो 1999 की जो है ना वो अगर मोटर पे देखी जाए तो कुछ लोगों ने तो उसके ऊपर जो है ना मेरे ख्याल से एक किताब भी जो है ना वो एक शख्स ने लिखी, और अगर उस वक्त जो नवाज शरीफ का जो है ना वो विजन था उसके मुताबिक जो है ना वो इस तरह की 5 मोटरवे जो है ना वो और बननी, वहां फिर वो परिवहन वाला सारा मामला हो गया और वो सारी चीजें वो इस तरीके से नहीं हो सकी। हाँ मुझे याद आ गया उस किताब में उन्होंने लिखा कि नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक वो वाजपेयी को बुलाकर तो उनके साथ ताल्लुकात जो है ना वो ठीक करके ये सारा मामला जो है ना वो करना चाहते थे कि अपना
8: खत्ते में मसला ठीक हो जाए, खत्ते में अमन आ जाए,
9: ठीक हो जाए, और मतलब कि हमारी जो अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और भारत के साथ, इन तीन मुल्कों के साथ अगर हमारी तजारत जो है ना वो ठीक हो जाए तो पाकिस्तान जो है ना मतलब ये कि हमें किसी और के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, और भी काफी मतलब बातें थी, वो बात जो है ना वो लंबी हो जाएगी। ये जो नवाज साहब ने जो आवाम से शिकवा किया है मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादती है, आवाम बहरहाल अपने लीडरों के लिए मारे भी खाती है, सब कुछ जो है ना वो करती है, जो शिकवा आपका बनता है जिस तरफ बनता है वो
8: एस्टैब्लिशमेंट से बनता है। ठीक है, चलिए कॉल ले लेते हैं। 416-593-0003 हमारे स्टूडियो में रबते का नंबर है, आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 7997 सर आप ऑन एयर हैं। 7997
10: नहीं नहीं कैसे है जनाब?
8: जी बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए
10: जनाब, अभी ये बिलाल साहब ने तो पूरी चार्जशीट दे दी है सबको, ठीक है, उसमें फौज भी शामिल है और ब्यूरोक्रेटी भी शामिल है और पॉलिटिकल लोग भी शामिल है। फौज इस तरह से शामिल है कि कश्मीर चला गया हाथ से, इंडिया ने हमारे साथ इतनी ज्यादतियां की, हमने कोई बदला नहीं लिया, बस जो छोटा मोटा जो टूटा हुआ उसमें कोई बन गया बन गया, जो बन गया नहीं बन गया जो भी है। रहा कराची का सिलसिला, तो आप खुद सोचे ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी और एक और वर्ड है ईमानदारी ऑनेस्ट, ये तीनों पाकिस्तान के लोगों में नहीं है जो ऊपर बैठे हुए, चाहे अभी बैठे हुए हैं चाहे पहले बैठे हुए थे, और जो लोग ये दावे करते थे कि पाकिस्तान बहुत ऊपर जाने वाला है उनसे पूछे कराची में पानी क्यों नहीं है, उनमें से पूछ ले। दूसरी बात ये है कि मुझे याद है अच्छी तरह कराची में अभी लोग खारा पानी लाते हैं और पीने के लिए पानी कहीं से लाते हैं और बड़ी वो ख्वाहिशारी से इस्तेमाल करते हैं, ये उस बड़े शहर की बात हो रही है जो पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है, ठीक है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट लाएगा और क्यों लाएगा, क्योंकि जो लोग चलाने वाले ना उनकी कैपेसिटी है ना उनकी कैपेबिलिटी है ना उनका कोई, ये उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। ये क्रेडिबिलिटी उसी वक्त होगी जब आप ये मालूम करेंगे लोगों से। कराची में जो इलेक्ट्रिसिटी की आप बात कर रहे हैं, इतने पावर प्लांट लगाने की जरूरत क्या थी, जिसने ये काम किया है उसको अकाउंटेबल करे ना,
8: सही
10: हिम्मत करे।
8: चले बहरहाल जी, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सूरत हाल बेहतर हो रही है। बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है सर, चले सर आप सर जो मर्जी समझें हम भी देखते हैं। चले ठीक है सर, फिर बहस नहीं हमारी। 5794 चौधरी साहब आप ऑन एयर हैं सर। 5794 चौधरी साहब, अकरम साहब
11: अस्सलाम वालेकुम जनाब।
8: जी वालेकुम सलाम।
11: भट्टी साहब देखे, नवाज शरीफ ने आज जो गुफ्तगू की है एक मुदब्बराना गुफ्तगू की है, किसी के कोई खिलाफ उन्होंने बात की है ओए तोए फला। देखिए बात अपना बंदा करता है, अपने जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मैंने की कि ये की आइंदा ये करूंगा या जो भी, बिलाल साहब ने काफी उस पर रोशनी डाली है। बात देखे अब चंद बद दिमाग ये जर्नैल ही थे ना उस वक्त 2013 की, क्यों गवर्नमेंट खत्म की गई, मुल्क पे कोई क्या आफत आ गई थी?
8: वो तो हर दफा ही होती है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की नहीं हुई, सभी की हुई है।
11: हाँ जी,
8: सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं, सबकी इस तरह ही हुई है। मतलब
11: मैं कभी, बात कर लो,
8: कभी सदर ने गिरा दी तो कभी पीपल्स लवारी साहब ने गिरा दी, कभी
11: सर बात फिर वही आ गई ना 2000, चले ज्यादा दूर नहीं जाते हैं 2013 तक चले जाते हैं। उस वक्त आपको जनाब बिजली आटा हैंडी चीनी आम मिल रही थी, मुल्क चल रहा था, बीएन जिस तरह बिलाल साहब ने बोला कि मुल्क आगे जाता। पहले लोग अच्छा फिर ये भी बताएं जी, पहले उनको नहीं जी वो अब उनकी सियासत खत्म हो गई है, वो नहीं आएंगे, वो बात नहीं करेंगे, वो बस हल्का नशी हो गए हैं, यार फिर आज वो कैसे आ गए हैं। बात देखे छोड़ते हैं इन तमाम बातों को भट्टी साहब, बात चले पीटीआई की तरफ आ जाते हैं। सुहेल अफरीदी साहब तो कहते थे जब आए थे कि मैं कभी ना ही नहीं बनाऊंगा। देखिए इनकी बातें छोड़ दें, वक्त तो देखे सियासी जमातों पे बुरे वक्त आते हैं। पीटीआई के पास कोई तरीका कहा, जिस तरह इन्होंने भी बताया, क्या आज उन्होंने नहीं कहा था कि मैं 2 जून को बस किसी और तरीके से आऊंगा? आप सोचते रह जाएंगे, आज मुलाकात हो गई।
8: सही
11: भट्टी साहब, बात देखें लोगों को समझना चाहिए, सियासत करनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए। और बिलावल साहब ने भी जिस तरह आपने फरमाया है, कल कुछ आज कुछ, बिलावल साहब को बिलावल को नहीं कुछ पता चलता, वो भी मकसद है अभी नापुख्ता सियासतदान है, किस तरह की गुफ्तगू करनी है, अब्बा जी कुछ कहते हैं वो कुछ कहते हैं, मुल्क को चलने दिया जाए, इसी तरह ही मुल्क आगे बढ़ेगा। कमियां कुताइयां गलतियां हैं, महंगाई भी है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के पास जो कुशन होता है वो उनकी कोशिश होती है। हम अब भी कहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को ये पेट्रोल की सूरत में या खासकर आईपीपी की सूरत में इसका मसला पूरा हल करे, मगर ना ये अच्छी बात नहीं है इनके लिए।
8: ठीक सर, थैंक यू,
11: थैंक यू वेरी मच सर।
8: अच्छा 8277 सर आप बात करना चाहेंगे? 8277
12: जी, अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम सर।
12: जी सर, ये जो आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर फरमाई है पिछले कोई 3-4 साल बाद बाहर निकल के,
8: हाँ जी हाँ जी,
12: उसमें वो किससे सवालात पूछ रहे हैं?
8: आवाम से पूछने और किससे पूछेंगे?
12: नहीं, गवर्नमेंट तो उनके ही है, उनके हाँ, भाई
8: नहीं, नहीं, नहीं मतलब वो आवाम से भी और एस्टेब्लिशमेंट से भी, मुझे क्यों निकाला?
12: तो नहीं, मुझे क्यों निकाला के अलावा जो बिजली नहीं आ रही है वहाँ पे, सड़कें नहीं है वहाँ पे, एयरपोर्ट नहीं है, ये किसका काम था सर? पिछले 35-40 साल से तो आप लोग हैं, इमरान खान के 3 साल निकाल दें आप, चलो उसने कुछ नहीं किया, उसने जीरो काम किया। आप लोगों ने पिछले 85 से लेके आज तक क्या काम किया?
8: ठीक, राइट, मिलाल साहब, ये बात इनकी सही है। मतलब वहाँ पे क्या फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है या वहाँ जो गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी होती है?
12: तो भाईजान वो पिछले
8: बिलाल साहब
12: गवर्नमेंट भी उनकी ही रही है ना,
8: बिलाल
12: गई है
8: ठीक
12: या इनकी रही है?
8: ठीक है, नहीं आपके सवाल बिल्कुल जी जी
12: دوسری میرا ایک اور پوائنٹ ہے جو بلاول صاحب بھی اپنا 45 کی بات کر رہے ہیں 47 کا میں
8: آج انہوں نے کہا کہ جی وہ غلط میری بات کو جو نا صحیح سیاق و سباق سے ہٹ کے وہ بیان کیا گیا
12: مطلب کہ وہ اپنا اعتراف کر رہے ہیں کہ پچھلی ہماری حکومت جو ہے وہ
8: 47 آج انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے میری بات کو گئی میں نے یہ نہیں کہنا تھا مقصد حالانکہ شاید یہی مقصد تھا ان کا
12: مطلب ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے
8: ٹھیک
12: بھٹو ابھی تک زندہ ہے
8: ٹھیک چلیں ٹھیک سر میں اگلی کال لے لوں بلا صاحب تھوڑا سا چھوٹا سا کیجیے گا یہ کس کی ذمہ داری ہوتی جو
9: دیکھیے ڈیفائن کرنا نا بڑا مشکل ہے کیونکہ دیکھیں ہر پروجیکٹ کے اوپر آپ انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ جی لیکن نواز شریف صاحب نے تین چار چیزوں کا ذکر کیا وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جیل کے یہ بھی دینا چاہتے تھے یہ بھی دینا ٹائم لگتا ہے نا مطلب ایک چیز ہے اس کی منصوبہ بندی ہوگی پلاننگ ہوگی پھر بجٹ ہوگا پھر آپ کی ایگزیکیوشن ہوگی تو یہ ساری چیزیں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے اور اگر حکومت ہی اس کے بعد نہ رہے
8: تو
9: جملہ اور ایڈ 15 سال کسی کی حکومت رہے نا تین ٹرمز کوئی حکومت دیکھے تو پھر اسے یہ سوال کہ ٹھیک اب ہم ذکر تو کر دیتے ہیں 35 سال انہوں نے حکومت کی لیکن 35 سال دیکھیں 1980 سے لے کے 2026 کے دوران تو جو ہے نا وہ ہاں اکٹھے اگر آپ نے 30 سال
8: لگاتار کرتے تو ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک شجا بھائی شجا صاحب آپ آنے رہے شجا محمود صاحب
13: ہلو
8: جی جی
13: جی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام سر
13: بتی صاحب دیکھیں بات تو ہے آرام سے کہہ دینا جی کہ 3 سال عمران خان کے نکال دیں کیوں نکال دیں یار
8: نہیں نہیں وہ یار آپ نا ایک میری بات سنیں آپ اپنی بات کیا
13: کریں آگے چلتے دیکھیے نواز شریف صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا انہوں نے عوام سے گلا کیا ہے ڈائریکٹ جو ان کا بھنتا ہے ایک بات دوسری بات انہوں نے اپنے پروجیکٹ بنائے ہیں انہوں نے کسی پہ تنقید نہیں کی وہ آپ یہ بھی تو فرض دیکھیے کہ وہ اپنے پروجیکٹ بناتے ہیں
8: ٹھیک
13: ان میں کسی بھی اخلاقی ضرورت ہے کسی نے بھی شہزادہ جو گیا سندھ کا یا یہ جو لادنا اندر ہوا 8-4 میں یہ ان میں سے کسی بھی ضرورت ہے کہ اپنے پروجیکٹ بنا کر کچھ ایفرٹ کریں
8: نا پروجیکٹ تو سندھ میں بھی پروجیکٹ تو چلتے ہی ہیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے
13: جنا اسپتال میں باتھ روم میں جا کے
8: نہیں وہ نہیں تھا وہ غلط ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات ایسی وہ غلط میڈیا جو آ جاتی بات غلط ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں نہیں غلط ہے نا سر وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے تو یہاں پنجاب میں ہوتا پنجاب میں ہو جاتے ہیں اس قسم کے واقعات یہ کون سی بات
13: یہ ہے کہ میں اس نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پروجیکٹ بناتے ہیں ہم بیٹھتے تھے نواز شریف کو لے کر کہ نواز شریف نے 4 سال بعد نکلا وہ 4 سال بعد کون سے نکلا یہاں سارا کچھ
8: نہیں نہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اچھی بات ہی کہہ رہے
13: ہیں اگر آپ کو پاکستان میں کوئی شخص اس وقت ہے تو اسے نواز شریف ہے شہباز شریف بھی نہیں
8: ٹھیک ہے برادر
13: تو آپ کو ایک لاسٹ چیز دیکھیے
8: شبیر صاحب
13: بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جو
8: چل ہیں ایک کال اور لینی پھر اذان کا وقت ہو جائے گا تھینک یو شبیر بھائی آپ آنے شبیر بھائی
14: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام سر
14: سب سے پہلے خالد عثمان صاحب کی تعزیت
8: یار بہت کل ہم نے اس کا ذکر کیا تھا بالکل کل ہم نے ظاہر ہے اس پہ دو تین دن بات کی جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے
14: آمین کراچی سے میں ابھی ریسنٹلی آیا ہوں کراچی سے آپ کب گئے تھے کراچی آپ اور بلال بھائی
8: میں کراچی تو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تو ہو گئے ہیں کوئی 10 سال 10 نہیں تو 8-7 سال تو ہو گئے ہوں
14: بس تو سچ بتا رہا ہوں آپ ایک چکر لگائیں میں آپ کے ٹکٹ کے پیسے بھی دینے کو تیار ہوں روڈوں پہ فٹ پاتھوں پہ روڈ لوگ سوئے ہوئے ہیں کھانے کو پیسے نہیں ہیں لائن لگی ہوئی ہے سلیانی میں جو چیریٹیبل ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن لائن
8: سر بڑا شہر ہے نا کروڑوں کی آبادی ہے ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے
14: نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سارا سندھ جو ہے نا انٹیریئر سندھ کا جو پاپولیشن ہے وہ پیسے مانگنے بھیک مانگنے کے لیے کراچی آ گیا ہے آفیسروں کی تبادلے جتنے بھی انٹیریئر سندھ کے وہ سب کی کراچی ہو گئی ہے تو رشوت بڑھ گئی ہے تو اس لیے ترقی نہیں ہو رہی ہے بیسک نیسیسٹی جو ہوتی ہے نا پانی بجلی
8: وہ نہ ہو تو پھر مشکل ہوتی بالکل
14: ہے ہی نہیں
8: چلے ٹھیک شبیر بھائی تھینک یو
14: بہت شکریہ
8: شکریہ تھینک یو بلال صاحب تھینک یو ویری مچ سر بہت شکریہ آپ کا کل آپ سے پھر بات کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ بس اذان کا وقت ہے مغرب کی اذان اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003
15: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آذان مغرب. اللہ

0: you're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
0: Don't touch that dial. After a short break and a few messages from our sponsors, stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी.

0: फाइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार।
1: पहले, मैं तो पहले भवरे जैसे अरे? पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टर्क।
0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम।
0: मेरी भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए। नॉट लिसनिंग टू यू,
1: दिन में नजरे इनकी इधर उधर।
0: आई एम नॉट लिसनिंग टू यू।
1: ओके,
0: आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Cashpoint, one stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
3: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: And you're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
0: Don't touch that dial. After a short break and a few messages from our sponsors. Stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
2: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
7: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
6: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM स्टे ट्यून्ड।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
2: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sioux and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.

0: पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द केयर it deserves.
5: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000. Aap sun rahe CMR at 9. Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
5: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: listen to us. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
0: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.

0: ही ख्यालों में सदा देता है, एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। वो मेरा कौन है मालूम नहीं, लेकिन जब भी मिलता है तो पहलू में जगा देता है। मैं जो अंदर से कभी टूट के बिखरूं, वो मुझको थामने के लिए हाथ बढ़ा देता है। मैं जो लम्हा कभी चुपके से भी रोना चाहूं, मैं जो तन्हा कभी चुपके से भी रोना चाहूं, तो दिल के दरवाजे की जंजीर हिला देता है। उसकी कुर्बत में है क्या बात न जाने मोहसिन, एक लम्हे के लिए सदियों को भुला देता है।
1: ये जितने मंजर हम अपनी आंखों में एक बार फिर से ताजा कर पाते हैं, जितनी हसीन रुतों को, जितने खूबसूरत और दिल नशीं मौसमों को एक बार फिर से अपने जहनों में, अपने ख्यालों में, अपनी सोचों में ताज़ा कर सकते हैं, इन सब का जरिया, इन सब का माध्यम, इन सब का वसीला आपकी आंखें हैं। ये आंखें देखती हैं और इन मंजरों को आपकी याद, आपकी सोच का हिस्सा बना देती हैं। ये आंखें भी कितना खूबसूरत जरिया हैं, कितना प्यारा रास्ता है, कितनी दिलकश शाहराह है, जिनके जरिए ये सारे मंजर सफ़र करके हमारी सोचों और हमारे ख्यालों का अटूट अंग बन जाते हैं, एक अहम जुज्व, लाजमी हिस्सा बन जाते हैं। अपनी आंखों का ख्याल रखिए, ये खूबसूरत चेहरों को देख के हमेशा के लिए आपकी यादों में सब्त कर देती हैं। सुनते रहिए लवी डवी शो।

0: और साहब एक राज, हम भी आप पर आज खोलना चाहते हैं, और राज ये है कि आप पे तो एक ही पॉलिसी के लिए, एक ही काम के लिए कीजिए, लेकिन फायदे आपको तीन तीन हो जाएं, ये कैसे हो सकते हैं? इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे आज हम बहुत सीनियर और बहुत ही तजुर्बाकार और आपके काम आने वाली, आपको बेहतरीन पॉलिसी दिलाने वाली एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, हरप्रीत कौर जी, वेलकम करते हैं आपको।
1: थैंक यू आमिर जी, एंड गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल माय लिसनर्स।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सवाल ये पूछना चाहते हैं कि 3-in-1 पॉलिसी क्या है और ये कैसे फायदा देती है हमें?
1: जी आमिर जी, बहुत अच्छा सवाल। 3-in-1 पॉलिसी मीन्स कि आप एक पंथ, वो कहते हैं ना

0: जो स्लोगन बना हुआ है और लाभ इतने ज्यादा कि 3-in-1 पॉलिसी में हम तीन चीजों जो है वो आपको कॉम्बो बना के देते हैं, उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस, आपकी क्रिटिकल इंश्योरेंस और आपकी डिसेबिलिटी, ये तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। और अंडर $100 जो है ये आप ले सकते हैं। इसमें हमें अलग अलग पॉलिसीज जो है लेते हैं कि डिसेबिलिटी एक लेते हैं, फिर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं अलग से, फिर क्रिटिकल का याद आता है हमें लेटर ऑन कि हमें तो क्रिटिकल की भी जरूरत है, तो उसको फिर हम लेटर ऑन लेते हैं। तो बेटर है कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप इन तीनों का अगर कॉम्बो प्लान लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम है, जो मंथली आपके चार्जेस हैं, वो भी उतने ही आपको कम देने पड़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस सबके पास है आमिर जी, तो लाइफ इंश्योरेंस में मैं जो बहुत अच्छी चीज, जो एक प्लस पॉइंट ऐड हुआ है कि हर कोई कहता है कि मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस को कैसे यूज कर सकता हूँ, सबको यही है कि लाइफ इंश्योरेंस ये हमारे सारे डेब्ट क्लियर करती है, जितने भी हमारे लोन्स है सब क्लियर करती है, राइट। वो आपको अगर कुछ हो जाता है आपकी लाइफ नहीं रहती है तो वो फैमिली को सपोर्ट करती है
1: जी।
0: जो प्लस पॉइंट है आमिर जी, नया एक नया ऑप्शन जुड़ा है इसमें, आप अपनी लाइफ को जीते जी खुद भी यूज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट जो हम नया दे रहे हैं उसमें उसकी कैश वैल्यू फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है, वो सबसे अच्छा पॉइंट है। और जैसे 20 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी एजुकेशन के लिए अगर आपने पैसा यूज करना है तो आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने नया घर लेना है तो आप वहां से विड्रॉ करके अपनी डाउन पेमेंट दे सकते हैं, जितनी भी कैश वैल्यू उस साल तक बनी है।
1: बिल्कुल तो, सही। यहां नंबर मैं आपका दे दूं पहले, 3-in-1 पॉलिसी है, एक पॉलिसी लेंगे तीन पॉलिसीज का फायदा मिलेगा आपको। यहां है नंबर 6473466611। जी हरप्रीत।
0: और इसके साथ साथ आमिर जी आप टर्म को भी ऐड कर सकते हैं और अपना 30 इयर्स आगे जो है वो कवर कर सकते हैं। और इसके साथ 30 इयर्स के साथ साथ जो परमानेंट आपकी कैश वैल्यू वो 100 साल तक आपको कवरेज देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस को खुद यूज कर सकते हैं, आप बच्चों के लिए यूज करना चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके घर के लिए, और अगर आप अपने घर के लिए या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है आने वाले सालों में, तो जितनी कैश वैल्यू आपकी बनती है आप उसको यूज कर सकते हैं विदड्रॉ करके वहां से। और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो उसका डेथ बेनिफिट है ना आमिर जी, वो भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपने 100,000 की 1,00,000 की पॉलिसी ली है और आज आपकी उम्र 30 साल है, तो आने वाले जब आप 80 साल के होंगे तो वो जो 1,00,000 है ना वो कई मिलियन बन चुका होगा।
1: बहुत अच्छी बात।
0: अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस, तो ये जो एक गोल्डन चीज आई है, इसके ये मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मेरा नंबर आपने बताया, मैं भी बताती हूँ, 6473346611। और आमिर जी क्रिटिकल इलनेस जो है उसमें 26 ऐसी बीमारियां हैं कि जो हमारा हेल्थ कार्ड भी कवर नहीं करता है, उनके लिए हमें पे करना पड़ता है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज जो है, बीमारियां हैं, जैसे मेजर हार्ट सर्जरीज होगी, कैंसर हो गया, तो काफी चीजें हैं उनके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो उनके लिए सेफ साइड के लिए भी आप क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं, एक 25,000 के स्मॉल अमाउंट से ही आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें भी एक कहते हैं ना कि प्लस पॉइंट छिपा हुआ है आमिर जी, सबको होता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं तो भला चंगा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ तो पैसे जाया हो गए, पैसे वेस्ट हो गए हमारे। नहीं, आप अगर क्रिटिकल इलनेस अकेला भी लेना चाहते हैं, ओनली क्रिटिकल इलनेस या कॉम्बो प्लान के साथ भी, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि एज 80 तक, 80 साल के जब आप होंगे तब तक आपको ये सारी कवरेज मिलेंगी। अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं एट द एज ऑफ 80, तो आपको अपना जो प्रीमियम इतने सालों का दिया है वो सारा का सारा पैसा आप ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है हरप्रीत कौर जी का, ये नंबर मिलाएंगे 6473466611। नंबर दोहरा रहे हैं 6473346611। हरप्रीत जी, आपसे हफ्ते में अब दो बार बात हुआ करेगी। ट्यूसडे हम आपसे बात करेंगे, 3-in-1 पॉलिसी के बारे में और भी बात करेंगे, और भी पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
2: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
3: आमिर और शिवानी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी दोपहर चाय के साथ, कॉफी के साथ या फिर लस्सी के साथ, मौसम को देखते हुए. 416-303-3639 ये रابطے का नंबर है. डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के हवाले से बात करना चाहें, अपनी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर हमसे यूं ही बात करना चाहते हैं, गाने फरमाइश करना चाहते हैं, शो में आप क्या सुनना चाहते हैं वो आप बातचीत करना चाहते हैं, और जब आप कॉल करें हमारे स्टूडियो के नंबर पर तो ज़रूर ज़रूर हमसे बात करें, और हमसे बात करने के लिए ही कॉल करें, और हम भी थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेते हैं तो हमारी बात भी सुन ले थोड़ी. ये थोड़ी रिक्वेस्ट है बस आपसे. 416-593-0055. देखिए, इंसान की फितरत होती है आमिर के हम हर एक सिचुएशन को में कंप्लेन करते हैं. जब ठंड का मौसम होता है तो हम कहते हैं इतनी ठंड है कैसे मैनेज करें. अभी गर्मी को आए चंद दिन नहीं हुए, कितनी मिन्नतों के बाद, लड्डू पेड़े क्या प्रसाद चढ़ाने के बाद ये आए. अभी से लोग, कई लोग जो हैं वो कह रहे होंगे कि इतनी गर्मी कैसे जाएं, मतलब इससे स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, हम कैसे बाहर निकलें. तो जब आप गर्मी को के बारे में कैनेडा में कंप्लेन करें, कैनेडा में जहाँ गर्मी एक बहुत बड़ी लग्जरी है, तो उसमें याद रख लीजिए दो लाइन मुझे दिखी थी. वैसे इस वक्त विंटर्स इतना लंबा हो चुका है, विंटर्स की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर मैं जरूर बताऊंगी. द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन टोरंटो वाज -32.8 डिग्री सेल्सियस.
1: ये ज्यादा तो नहीं है
3: जी, ये विंटचिल के साथ नहीं बताया गया, जो हम एक्चुअल जो कहते हैं,
1: राइट.
3: हाँ, लेकिन जो विंटचिल के साथ सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, ये जो मैंने आपको बताया -32.8, ये 1859 में था.
1: अरे अरे, बहुत पहले.
3: लेकिन 1981 में टेम्परेचर इतना ही था, सबसे ठंडा माना गया. ये था -31.3 विंड चिल के साथ. जो हम एक्चुअल टेम्परेचर जो हम महसूस करते हैं वो था -44.7.
1: अरे वाह, That was a staggering
3: अब
1: number.
3: अगर यहाँ तो +44 कभी होगा नहीं
1: जी,
3: बस माइनस लगा लीजिए जो भी टेम्परेचर है आप मौसम से प्यार करने लगेंगे
1: जी बिल्कुल. मुझे ये लगता है कि एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. आप अपने आप को कैसे ढालते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज में आपने देखा अबू धाबी, मस्कत, ओमान, दोहा, कतर, कुवैत, बहरीन, इस तरह के ममालिक में दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला जाता है, तापमान जिसे कहते हैं, हाँ जी, बहुत ऊपर चला जाता है. लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहाँ बड़े खुशहाल रह के जिंदगी गुजारते हैं. उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल लेते हैं. हम कनेडियंस की आदत बहुत हसास हो गई है, वी हैव बिकम वेरी सेंसिटिव. सर्दी आती है तो हम कहते हैं उफ तौबा बहुत सर्दी है, और गर्मी आती है तो हम उस पर भी तनकीद करने लगते हैं. मुझे लगता है ये काम ना करने के बहाने हैं
3: जी. बिल्कुल सही, काम ना करने के बहाने हैं. एक काम जरूर कीजिए, अपने फोन पे हमारा नंबर जरूर सेव रखिए, 416-303-3639, और बड़ा तड़कता भड़कता सा गाना इस मौसम में जरूर डांस कीजिए, लेकिन अपने रिस्क पर, कार ध्यान से ड्राइव कीजिए.

0: साहब, बहुत से ऐसे खातिनों हजरात जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, गाड़ियों में सवार हैं, सफर में रवां दवा हैं, मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि एक चीज, एक बात, एक काम, एक मामला हमारे इख्तियार से बाहर है, और वो है हादसे का हो जाना। आप ना भी करें किसी के साथ हादसा, सड़क पर किसी की कोई गारंटी, कोई जमानत नहीं, कहां से कोई गाड़ी गुमनाम सी, नामालूम सी आपके साथ आके टकरा जाए और हादसे का सबब बने, ऐसे में आपके पास एक नंबर लाजमी होना चाहिए। उसी वक्त तुरंत फौरी तौर पर वो नंबर मिलाइए और फौरी मदद पाइए। मदद कैसी कि आपकी सुध बुध खो जाती, आपको पता नहीं चलता करना क्या है। तो ये शख्सियत हैं जिनका डायरेक्ट नंबर दे रहे हैं, ये बैरिस्टर हैं। इससे पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, कवानीन पढ़े जो बिजनेस से मुतालिका, कॉर्पोरेट सेक्टर से मुतालिका, कमर्शियल से मुतालिका थे, उसके बाद फिर बैरिस्ट्री की और स्पेशलाइज्ड हैं पर्सनल इंजरी में। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, पर्सनल इंजरी में स्पेशलिस्ट बैरिस्टर हैं सैयद एम रजा बैरिस्टर। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: जी तो कैल भाई, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके लिसनर से अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं।
0: थैंक यू।
1: और आपको और आपकी टीम को ये नया टाइम जो है ये बहुत बहुत मुबारक हो।
0: शुक्रिया।
1: और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी टीम इस नए टाइम को भी जो है वो कम्युनिटी के बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए जो अब तक आप कर रहे हैं यूज करेगी और आपको जो है वो इसमें यहाँ पे और कामयाबी मिले।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश इनायत।
1: जी तो आप हमारा बता रहे थे सैयद लॉ ऑफिस जो कि एक पर्सनल इंजरी लॉ फर्म में इसका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है, कॉस्मेटिक इंजरी है और एरोप्लेन इंजरी है। क्योंकि अब आपका टाइम चेंज हुआ है यहाँ पे, यकीनन आपके लिसनर जो है वो वाले नहीं होंगे जो 9 to 11 वाले होते हैं
0: जी।
1: तो इसलिए जो है मैं चाहूंगा कि आज जो है वो अपनी फर्म का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा जरा ज्यादा दे दें।
0: बिल्कुल ठीक।
1: ये सैयद लॉ ऑफिस जो है वो हैव बीन डूइंग दिस इंजरी क्लेम फॉर लास्ट 13 years। वी हैव सक्सेसफुली यू नो व्हाट गॉट पीपल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सेटलमेंट एंड वी यू नो व्हाट एवरी डे वी ट्राई टू चेंज लाइव्स ऑफ पीपल बिकॉज द थिंग इज दैट व्हेन दे आर इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट सो देयर लाइफ टर्न्स अपसाइड डाउन। जब उनका लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है कि तो उसमें उनके पास जो होप होती है वो होप यही होती है कि उनको इंजरी क्लेम जो है वो उनका सेफ हैंड्स में हैंडल हो, उनको वो तमाम बेनिफिट्स मिले जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, उनको वो तमाम जो है वो कंपेंसेशन मिले जो कि उनको चाहिए हैगा, जिसमें आप सबसे बड़ी चीज जो है वो इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट्स हैगा जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती हैगी। इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट के अलावा आपका हाउसकीपिंग का बेनिफिट हैगा, आपका पर्सनल केयर का बेनिफिट हैगा, आपकी ट्रीटमेंट की नीड्स हैंगी आपकी। फिर अगेन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्लेम हैगा वो आपका क्लेम हैगा अगेंस्ट दी एट फॉल्ट ड्राइवर जो कि बेस्ड ऑन आपकी पोटेंशियल लॉस ऑफ इनकम अप अंटिल द डेट ऑफ योर रिटायरमेंट हो सकता हैगा। उसके अलावा आपका जो है वो फ्यूचर केयर की नीड्स का क्लेम हैगा विच कुड ऑल्सो रन इन टू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एज वेल। और उसके अलावा आपका जो क्लेम हैगा जिसमें आपका मेड एंड रिहैब की नीड्स रहेंगी ये आपका क्लेम हैगा। तो ये सारे क्लेम्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट क्लेम हैंगा और हम ये चाहते हैंगे कि आपके क्लेम को जो है वो इस तरह से प्रोसीड किया जाए कि आपको जो है वो किसी भी जो है वो इस तरह का फ्यूचर में आपको जो है वो कंपेंसेशन की आपके पास फंड्स की कमी ना हो ताकि आप आने वाली जिंदगी जो है अपनी पुरसकून अंदाज में गुजार सकें।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो है ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए आप तैयार लॉ ऑफिस जो है वो दिन रात आपके लिए काम करता हैगा और ये मेक श्योर करता है कि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिले। तो मैं आपके लिस्टर से कहूंगा कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट हो, स्लिप एंड फॉल हो, ट्रिप एंड फॉल हो, डॉग बाइट हो, कॉस्मेटिक इंजरी हो, आपने एक ही एक नंबर पे कॉल करना हैगा सैयद लॉ। नंबर तो फैल भाई आप बताएंगे आपके लिस्नर्स को ताकि आपके लिस्टनर्स हमारा नंबर नोट कर लें। थैंक यू।
0: बिल्कुल सही, यहाँ है नंबर, सैयद एम रजा बैरिस्टर का डायरेक्ट नंबर दे रहे हैं। अपनी जुबान में अपनी बात बताइए, एक्सीडेंट होने के फौरन बाद कहीं और फोन करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां इस नंबर पर फोन करेंगे आप 416-937-5046। नंबर दोबारा बता रहे हैं, मेक अ नोट ऑफ दिस नंबर, डायल इट नाउ 416-937-5046। सैयद एम रजा बैरिस्टर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।

0: और सर, अगर आपको ग्रांट चाहिए, आपको लोन चाहिए, और ग्रांट के बारे में मैं खास तौर पर आपको बता दूं कि अगर आपकी आमदन 70,000 से कम है तो आपको अप टू 60,000 डॉलर्स मिल सकते हैं। $60,000 आपको मिल सकता है अगर आपकी आमदन, आपकी इनकम 70,000 से कम है। ये कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा, ये बात करेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: सभी को हमारी तरफ से सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन लोग ये ग्रांट ले सकते हैं।
1: हाँ जी, सो हमारी कंपनी का नाम है यूनी ग्लोबल एडवाइजरी, ऑफिस हमारा मिसिसागा में है, 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड। 7 ईयर से बिजनेस में है, एडुकेशन कंसल्टिंग में है, और हम उन्हीं कोर्सेज में डील करते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है। मींस गवर्नमेंट आपकी फीस पे करती है डायरेक्टली टू द कॉलेज, नंबर वन। नंबर टू, आपको लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए फंडिंग देती है। आपके अकाउंट में 30,000 से 100,000 की फंडिंग होती है। और इसका आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 50% पोर्शन नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स ग्रांट्स ग्रांट्स का जो पैसा वापस ही नहीं करना।
0: वेरी नाइस।
1: वापस ही करना, आधा लोन है 0% पे। और एजुकेशन फंडिंग है जी, कोई हम और फंडिंग में डील ही नहीं करते जिनमें कैच होता है। सिंपल सा काम है, आप स्किल हासिल करते हैं, तालीम हासिल करें, मुकम्मल फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें। जितने हमारे कितने ही क्लाइंट्स, हजारों क्लाइंट्स हासिल कर चुके हैं जी।
0: बिल्कुल ठीक, यहाँ नंबर है, ये नंबर मिलाइए, आपको $60,000 मिल सकता है। और ये ग्रांट का पैसा है, कुछ इसमें अगर आप लोन लेना चाहें लोन भी ले सकते हैं, और वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। ये रहा नंबर 4372643175। नंबर दोबारा दे रहे हैं, $60,000 की ग्रांट घर बैठे मिल सकती है, 4372643175। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी अपनी भी कोई फीस है हजारों लाखों डॉलर में, या कैसे ये काम करता है सारा ये मैकेनिज्म?
1: हाँ जी, इसमें लाइक आप मान के चले अगर फैमिली ऑफ फोर है तो अप टू 80,000 की फंडिंग मिलती है, जिसमें से $40,000 ऑप्शनल लाइक वो ग्रांट का पैसा है, जो ग्रांट है जो नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री है। जो रेस्ट $40,000 है ऑप्शनल लोन है, 0% पे है, और 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है आपने इसमें। लेकिन आपके पास स्टेटस जरूर होना चाहिए PR, सिटीजन प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड पर्सन का।
0: अच्छा।
1: हुकूमत अपनी आवाम के लिए सर्विस लेके आई है, ये नहीं कि आप वर्क परमिट पे आए हैं, राइट? अगर आप PR, सिटीजन या प्रोटेक्टेड पर्सन है, इनकम आपकी कम है 2024 के नोटिस असेसमेंट पे, तो ही आपको इसका बेनिफिट है, सिर्फ तभी आप हमें कॉल करें।
0: बिल्कुल सही। ये बताइए कि जो मेरे जैसे 65 साल के लोग हैं, या 66 साल उनकी उम्र हो गई, 70 तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी ये फंडिंग चलेगी, ये ग्रांट चलेगी, उनको भी कुछ मिलेगा, या बस हाथ पे हाथ धरे घर में ही बैठे रहेंगे बेचारे?
1: चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
0: ओ वाओ, अच्छा।
1: यानी कि हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी एज 75 ईयर्स भी है।
0: अरे वाह वाह।
1: और लाइक अप टू $45,000, लाइक रिटायर्ड कपल है, वाइफ पढ़ रहे हैं।
0: $45,000 मिल गया 70 साल की उम्र में?
1: बिल्कुल जी, 45 मिला, उसमें से 25,000 ग्रांट का पैसा है, उसमें से 11,000 कॉलेज की फीस चली गई, 14,000 तो ग्रांट का मिल गया नेट ग्रांट, साथ में 17,500 का लोन, मतलब 32,000 की जेब में गया पूरा पैसा, 32,000, जिसमें से 14,000 तो ग्रांटी सर, कॉलेज फीस निकाल दी हमने पहले ही। तो मतलब अगर आपकी फैमिली ऑफ फाइव है, अप टू आपके 3 बच्चे हैं आपके, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, वो भी डिपेंडेंट ही काउंट होते हैं, फैमिली ऑफ फाइव है, तो अप टू 100,000 की फंडिंग भी बन जाती है, जिसका $50,000 हाफ पोर्शन ग्रांट है आज की डेट में। और जो $50,000 है वो आपने 1.5 साल बाद देना स्टार्ट करना है, तब तक इसका ब्याज दर क्या है?
0: बिल्कुल सही, यहाँ है नंबर
1: 28% पूरे साल का।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप,
1: ऑफिस आए।
0: बिल्कुल सही, आप ग्रांट लीजिए या आप लोन लीजिए, लोन इंटरेस्ट फ्री है, और 1.5-2 साल के बाद कोर्स मुकम्मल होने के बाद लौटाना शुरू करेंगे आप। और दूसरा, आपको जो ग्रांट मिलेगी वो तो लौटानी नहीं है, मुफ्त का ये पैसा है, स्किल भी डेवलप कीजिए, पैसा भी लीजिए, और ये गवर्नमेंट का पैसा है। ये नंबर मिलाएंगे आप 4372643175। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, कोई आके आपसे मिलना चाहे तो क्या तरीका है?
1: हमें कॉल करें, हम आपका क्विक असेसमेंट फोन पे कर देंगे, देन आप हमारे ऑफिस आए, नहीं तो वर्चुअली भी सारा काम हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो अभी जो गवर्नमेंट 1 अगस्त के बाद जो नया अकेडमी के स्टार्ट हो रहा है
0: जी,
1: उसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है,
0: कट कर रही है, सही है।
1: तो ये नहीं अब 2 महीने बाद आएंगे, 2 बैच रह गए, 1 जून में स्टार्ट है मतलब 10 जून को और 1 है जुलाई में। अगर आपने इस अकेडमी केयर में एनरोल करना है आपको तभी इसका बेनिफिट है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको 100,000 बन रहा है तो 50,000 ग्रांट है। आप अगर 1 अगस्त के बाद आएंगे तो बनेगा 100,000 नहीं लेकिन सारा लोन है। आसान से कोर्सेज हैं जी, 40-50 साल के हमारे ज्यादातर क्लाइंट मिडिल एज ग्रुप के हैं, हम उनको उन्हीं कोर्स में डालते हैं जो फुली ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स है, एग्जामिनेशन नहीं है, आसान से कोर्सेज है। हम आपको इस उम्र में आपकी फैमिली जिम्मेदारी के साथ साथ आपको कॉलेज में बैग बैग टिफिन बॉक्स लेके नहीं भेज रहे, आसान से कोर्सेज है, फुली ऑनलाइन है, 30 से लेके $100,000 गवर्नमेंट फंडिंग देती है लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री, पैसा होता ही है और कहीं भी कैसे भी आप इसे खर्च कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक,
1: इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट चेक नहीं होता, एज लिमिट कुछ है नहीं,
0: बिल्कुल सही,
1: मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा।
0: इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें वरना पछतावा होगा, यही जुमला, यही फिक्रा, यही सेंटेंस है और ये है नंबर 4372643175, 437-264-3175. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, आपके शो में आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और आमिर, हम जब अगर हम ब्यूटी टिप की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम खूबसूरत हैं तो सही मायने में हम खूबसूरत तभी हैं जब अंदर से भी हम खूबसूरत हैं।
1: आप अपनी बात कर रही हैं?
0: नहीं, आपकी।
1: अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत।
0: आपकी तरफ देख के मैंने बताया। तो अगर मेरी बात आप कोई ऐसी टिप लीजिएगा फिर मुझे डेडिकेट कीजिएगा।
1: मैं कोशिश करूंगा। आप जैसी टिप्स ढूंढना आसान नहीं है। आई नो हाउ हार्ड यू वर्क ऑन ऑल दिस।
0: जी, तो अपनी अगर आप कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, अगर ब्लेमिशेस हैं, एक्नी है, ओपन पोर्स हैं, या फिर और डार्क सर्कल्स हैं, दूसरे इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसके लिए बहुत आसान से तरीका है। एक बोल में 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल एक कूलिंग एजेंट होता है जो हमारे चेहरे पर मिरेकल करता है। उसमें 4 पिंच ऑफ कॉफ़ी पाउडर मिलाइए।
1: कॉफ़ी पाउडर
0: वंडर करता है हमारी स्किन पर, एक स्क्रब की तरह काम करता है बिकॉज ऑफ द टेक्स्चर ऑफ द कॉफ़ी, राइट? और 4 पिंच ऑफ कॉफ़ी पाउडर मिलाइए, थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल लीजिए, थोड़ा सा टर्मरिक लीजिए और कुछ टी ट्री ऑयल या फिर इस तरीके का कोई भी ऑलिव ऑयल ले लीजिए, कोई भी ऑयल डाल दीजिए और उसको अपने चेहरे पर लगाइए, ओवरनाइट लगे रहने दीजिए।
1: अच्छा।
0: और बहुत जल्दी आपको स्किन पर असर पता चलेगा और जब आप अपनी खूबसूरत सी स्किन रोज देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
1: नहीं तो ये जो सारी रात आप अपने चेहरे पर लगा रहने देंगे तो चेहरा आपका वो दिखाई नहीं देगा जो असल में है, तो उसके ऊपर एक लेप दिखाई देगा देखने वाले।
0: हम लेडीज वी आर परफेक्टली फाइन कि हम जैसे हैं वैसे रात में ना दिखाई दे, हम बिल्कुल लगा लेंगे। ऑल द लेडीज, आप मेरे साथ रिलेट कर रही हैं ना, ये मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता।
1: अच्छा,
0: हमें एंड रिजल्ट से फर्क पड़ता है।
1: इसीलिए तो मुझे लगता है कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई तकरीब हो, तो खवातीन रात में अगर मेहमान वगैरह आ जाएं तो उनसे मिलने से कतराती क्यों है? आज ये राज मुझ पे खुला कि उन्होंने चेहरे पे कुछ लगाया हुआ होता है। लाख उनको आप बुलाएं कि आ जाएं, शिवानी मेहमान आए हैं, प्लीज अभी आइए, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और शिवानी की ना तो आवाज आ रही है ना शिवानी खुद आ रही हैं, इसका मतलब है शिवानी ने कुछ लगा रखा चेहरे।
0: जी बिल्कुल, कितने समझदार है आमिर आप, सच में मतलब
1: समझदार लोगों के साथ रह रहे क्यों?
0: ये आपका एक्सपीरियंस, जितना ब्रॉडकास्टिंग में एक्सपीरियंस है आमिर जी को 27 से 30 सालों का, उतना ही एक्सपीरियंस इस तरीके की बातों में भी है कि कौन रात शाम को जाता है, कौन नहीं जाता है, किसने फेस पे क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया, ये फ्लुएंसी में आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है।
1: कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चेहरे को बिल्कुल तरोताजा होना चाहिए। तो माइंड का अगर इंडेक्स है चेहरा, तो रात को तो फिर माइंड बड़ा अजीब सा हो जाता होगा जब चेहरे पे लेप पड़ा हुआ है 4-4 इंच का।
0: अगर कंफ्यूजन की पराकाष्ठा एक्सट्रीम लेवल पर आप पहुंच गए हो आमिर की बात सुन के, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए, पिगमेंटेशन फ्री, डार्क सर्कल्स फ्री और ओपन पोर्स और एक्नी फ्री, तो आपको बस एक बोल में 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है, थोड़ी सी उसमें कॉफी पाउडर डालिए, टर्मरिक डालिए और टी ट्री ऑयल डालिए। सबसे ज्यादा क्वांटिटी आपकी एलोवेरा जेल की होनी चाहिए बिकॉज दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट। कॉफी पाउडर और टर्मरिक कम डालिए, टर्मरिक आप ज्यादा डालेंगे तो आपका चेहरा येलो हो जाएगा। और अगर रात भर आप हल्दी लगा के अपने चेहरे पर रखेंगे तो नेक्स्ट डे आपको कई राउंड्स ऑफ फेस वॉश यूज करने पड़ेंगे बिकॉज येलो कलर आपकी स्किन में चला जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन अप्लाइंग टर्मरिक ऑन योर स्किन। कोशिश कीजिए 1 घंटे बाद आप उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए 4163033639।
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ। ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
3: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
9: Lovey Dovey Song of the Day is brought to you by Ruhani College। आँखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 905-731-2555 रूहानी कॉलेज।

0: द जर्नी सॉन्ग, इसी सॉन्ग के साथ छोड़े जाते हैं आपको आमिर और शिवानी इस वादी के साथ की कल जुड़ेंगे एक बार फिर से हम आपके साथ साथ। किसी भी जानकारी के लिए 4163033639 पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, रापता कर सकते हैं 4163033639। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हैव अ ग्रेट आफ्टरनून। नमस्कार।
1: जिंदगी इतनी छोटी है कि सारी की सारी किसी की मोहब्बत में गुजर जाए, किसी के प्यार में गुजर जाए तो कम लगती है, और बदकिस्मती से हम इसे नफरतों में, हकारतों में ज़ाया कर देते हैं। इसको ज़ाया मत कीजिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत लीजिए, मोहब्बत फैलाइए जहाँ तक मुमकिन हो सके। अपना ध्यान रखिए। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे अहेड एंड हे।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aaj hi hai.
4: Jal pe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Masiki Rail Gari, aayi Sean Express, Masiki Rail Gari.
5: Sean Express, Masti Ki Rail Gari.
6: Ek drive and musty show, jisme hai aaj ke zamane ke top songs, taza tareen khabrein aur chatpati gossips, jo aapke drive ko banayenge power drive. Sean Express, Masti Ki Rail Gari, drive time show with Shalini.
5: Shalini, brought to you by Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका मैं शालिनी वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3. हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं ढेर सारी पॉजिटिविटी म्यूजिक एंड गुड वाइब्स लेकर. दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, कभी एक सीख, कभी एक मुस्कान और कभी एक नया मौका. और आज का पॉजिटिव थॉट ये कहता है कि हर दिन की अपनी एक अहमियत होती है, बस उसे अच्छे नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है. तो आज अपने दिलों को हल्का कीजिए, सोच को पॉजिटिव रखिए और आज के दिन को एक पॉजिटिव रुख भी दे दीजिए. और वक्त आ चुका है दोस्तों जानने का कि आसपास और दुनिया भर में क्या हो रहा है. तो शुरुआत में रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों का शॉन एक्सप्रेस पर. गुड आफ्टरनून.
5: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
8: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन. शायर शारिक कैफी के बेहद खूबसूरत अल्फाज, मोहल्ले भर की खामोशी का मतलब मेरी आवाज बाहर जा रही है. इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का. और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि 63 लोग घायल हैं. इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है. कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर शोक जताया है. कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई लोगों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद 25 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के लगभग 4 महीने बाद उन्हें दफनाया जाएगा. खामेनेई ने उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद शहर में शिया इस्लाम के चर्चित इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर के पास दफनाया जाएगा. इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के मुताबिक खामेनेई को 21 जून के आसपास आखिरी विदाई दी जा सकती है. ब्रिटिश सांसद कपर्ट लोव ने संसद में अपने एक भाषण में ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग कांड पर फिर से बहस छेड़ दी है. उन्होंने इस भाषण में पीड़ितों की गवाही पढ़ी. उन्होंने संसद को बताया कि रेप गिरोह की 2 हफ्तों की जांच की सुनवाई के दौरान जो बातें कही गईं उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि एक पीड़ित से 13 से 16 साल की उम्र के बीच 600-700 अलग अलग पुरुषों ने रेप किया. लोगों ने कहा ब्रिटेन के कम से कम 85 इलाकों में संगठित बाल यौन शोषण के संकेत मिले हैं. और अब रुक कर लेते हैं भारत से जुड़ी खबरों की तरफ. दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक हैं, इनमें 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के हैं. एजेंसी ने पहले आंकड़ा 17 बताया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक 10 भारतीयों में से 8 आपस में रिश्तेदार थे। इनमें 3 राजस्थान के और 5 हरियाणा के रहने वाले थे। हादसे में कुल 35 लोग घायल हुए, इनमें से 19 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। इस साल भारत समेत दुनिया भर में सूखे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। यूएन की इस मौसम एजेंसी के मुताबिक प्रशांत महासागर में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच अलनीनो बनने की आशंका 80% है। नवम्बर तक इसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों और विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए। कॉकरोच इस बैक के ट्वीट के अनुसार पत्रकार सौरव दास मुख्य प्रवक्ता होंगे, वहीं फिल्म मेकर विजेता दहिया और IIT कानपुर और ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से के एलुमनाय आशुतोष रांका भी प्रवक्ता होंगे। उत्तर प्रदेश में एक बहू ने अपनी सास को सिर पर उठाकर 84 कोस की परिक्रमा कराई। वहीं ब्रिटेन में एक शख्स के पास उसकी पगड़ियों से मैच करती हुई रोल्स रॉयस कारें हैं। उधर अमेरिका से स्पेन जा रही फ्लाइट में बॉम्ब नाम का ब्लूटूथ डिवाइस ट्रैक हुआ, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ऐसी भी अजब गजब खबरें होती हैं। पंजाब सरकार ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। चंडीगढ़ में सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्राइवेट स्कूल अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, साथ ही पेरेंट्स को किसी विशेष दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकेंगे। जोधपुर से खबर आ रही है, एक सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से परेशान हुई महिला इन्फ्लुएंसर की, अनीता विश्नोई इनका नाम है। इन्होंने घर में जहर पी लिया। हालत बिगड़ने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कंटेंट क्रिएटर अनीता ने ये कदम उठाने से करीब 5 पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि आज के बाद आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी। वजह ये थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कपड़ों को लेकर, छोटे कपड़ों को लेकर अपनी राय रखी थी और उसके बाद ही इनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, और इस ट्रोलिंग से परेशान होकर बताया जाता है कि उन्होंने ये कदम उठाया। और अब खबर बॉलीवुड से, आमिर खान देने वाले हैं खुशखबरी, 1, 2, नहीं 3। यानी आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं 5 जुलाई को एक प्राइवेट सेरेमनी में वो शादी करेंगे। इस शादी में कोई भव्य आयोजन या ग्रैंड रिसेप्शन नहीं रखा गया है। 3 मैंने शुरुआत में इसलिए कहा क्योंकि ये तीसरी शादी होगी आमिर खान की। दोनों एक छोटे से साइनिंग सेरेमनी के जरिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल करेंगे। आमिर खान ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी के साथ अपने रिलेशनशिप की बात मीडिया के सामने कन्फर्म की थी। आमिर खान की ये, याद रहे, तीसरी शादी है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम के इस सेगमेंट में आपका हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन हम जो है पॉजिटिव स्टेप लेने से पहले बहुत सोचते हैं। दोस्तों, अब सोचने का वक्त नहीं है, अब एक्शन लेने का वक्त है। ये रिसेशन प्रूफ काम आप कर सकते हैं और अपने मनचाहे वक्त पर ये काम कर सकते हैं, और जो है पैसे की बात रही तो कंसिस्टेंटली मनी आप अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को वक्त भी दे सकते हैं। ये सब कैसे कर सकते हैं, आइए जानने के लिए आपको उस सपनों की दुनिया में ले जाएं जो हकीकत है हमारी जिंदगी में, और विन लाइफ टाइम के दफ्तर में लिए चलते हैं, जहां से रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड, गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से राफी जी। और जैसा मैंने कहा कि लोगों को पहले लगता है कि इतना सारा पैसा कमाना एक सपने की दुनिया होती है, लेकिन हकीकत में भी ये चीज़ पॉसिबल होती है। ये जब वो जानते हैं और जब खुशी आती है उनके चेहरों पर, तो एज अ मेंटोर आपको कैसा लगता है?
2: लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके समटाइम रेडियो एड पे देना कई दफा हो जाता है कि टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पिरामिड्स हैं और आप कहें पिरामिड्स नहीं हैं, क्योंकि आपने अगर नहीं देखे हुए, इट डजंट मेक इट कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो जस्ट बिकॉज यू हैवन्ट सीन समथिंग और आपको ये यकीन हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हमें तो ऊपर वाले पे यकीन छोड़ देना चाहिए, कोई देखा किसी ने नहीं। तो इस सारे में हम लोग आपके जो सपने ऑफकोर्स हम प्रेजेंट करते हैं, उसमें सिर्फ एक चीज आपसे मांगते हैं, वो डिसिप्लिन है। ना आपसे टेक्निकल नॉलेज मांगते हैं, ना आपसे फाइनेंस का, ना कंप्यूटर का, सिर्फ कहेंगे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन है। $100 पर डे से स्टार्ट करें एंड यू कैन स्काई इज द बिगिनिंग।
1: ब्यूटिफुल। सो $100 पर डे आप मिनिमम कमा सकते हैं, विच इज ग्रेट। और राफी जी, इसके लिए वक्त कितना देना होगा, और क्या हमारे लिसनर्स अपनी रेगुलर जॉब्स के साथ ये काम कर सकते हैं एज पार्ट टाइम?
2: जी एब्सोल्युटली, हम बिल्कुल हाईली इनकरेज करते हैं कि अपनी करंट सोर्स ऑफ इनकम, करंट जॉब को ना छोड़े, पार्ट टाइम आए। 90 मिनट्स से डे है, 9 o'clock एवरी डे ईस्टर्न शुरू हो जाता है। अभी हम वैंकूवर और कैलगरी से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने ऑफिस उधर खोल दिया है। सो इट्स 23 hours a day मार्केट खुली है। आज भी जिस तरह हम मेंटर हैं, शाम को 8 बजे हम लोग एक वन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की एक्सरसाइज भी वंस अ वीक करते हैं। तो आपको अकेले नहीं छोड़ा जाएगा, आपके साथ कोई ना कोई हमेशा खड़ा है।
1: वेरी नाइस। और अगर हमारे लिसनर्स आकर देखना चाहें ऑफिस में कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरह से ट्रेनिंग होती है, तो क्या अवेलेबिलिटी रहती है ड्यूरिंग द वीक डेज एंड वीकेंड्स में? तो आपके सेमिनार होते ही हैं, तो जरूर इस हवाले से अपडेट कर दें हमारे लिसनर्स को।
2: जी एब्सोल्युटली, बोथ ऑफिसेज आर ओपन द सैटरडे सेमिनार के लिए। सर, आप ट्रिनिटी ड्राइव वाले ऑफिस में आके मंडे टू फ्राइडे 9 to 2 o'clock एनी टाइम आके एज ए ऑब्जर्वर देख सकते हैं कि किस तरह का टीचिंग स्टाइल है। आपने अगर इसको ऑडिट करना है तो ऑफकोर्स एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट फॉर यू।
1: वेरी नाइस। तो वेल दोस्तों, देर किस बात की है। सबसे पहले तो जो फ्री सेमिनार है सैटरडे का दोपहर 1 बजे का, इन द हार्ट ऑफ मिसेस सागा, अपनी फ्री सीट्स आप बुक करा लें 9052061008 या विजिट करें वेबसाइट winlifetime.com। राफी जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और फिर आपसे मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू जी, टेक केयर।
1: टेक केयर। हरवेल दोस्तों, एक क्या परफेक्ट मौसम है, और वेंसडे June 3rd 28 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर का तापमान, और इसके साथ साथ इस वक्त आपको 28 डिग्रीज ही महसूस हो रहा है, और अब जो है आज का लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता है रात के 11 बजे 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग से हिट ट्रैक की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंजॉय कीजिए, फुट टैपिंग म्यूजिक है, क्योंकि बाहर जो मौसम है बिल्कुल समर लाइक मौसम हो रहा है। सो आइए, लेट्स नाचो टुगेदर ऑन मस्ती की रेलगाड़ी।

0: एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Team #homes and

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
8: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
9: Another Don Clean with the Don Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
12: हाँ जीविंद्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम आपके दोस्त जतीन आपके लिए रेडियो वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट. बिंद्र भाइयों,

0: देना होगा आपको जवाब। आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के। आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है, क्या एड्रेस जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com। आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस। उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। ये ही वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
1: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50-7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
2: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman, sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
5: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
5: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, सुइट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।
6: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
7: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस एफएम 101.3 और मैं हूं अमिताभ। वेंसडे का खुशनुमा मौसम, घड़ी में बज रहे हैं करीबन 4:25 और वक्त हो चला है उनसे मिलने का जिन्हें आप सालों से रियल एस्टेट की ट्रस्टेड अथॉरिटी मानते आए हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी और आपकी फेवरेट पर्सनालिटी श्री पी के सबरवाल जी की। सबरवाल जी पिछले कई दशकों से अपनी नॉलेज, इंटेग्रिटी और मार्केट एक्सपर्टीज के दम पर हजारों फैमिलीज का अपना घर खरीदने का सपना बखूबी पूरा करते आ रहे हैं। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अपना घर खरीद अपग्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख रहे हो, या फिर प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डो मार्केट को थोड़ा बहुत समझना चाहते हो, हर हफ्ते सबरवाल जी लेकर आते हैं मार्केट की सीधी, सटीक और प्रैक्टिकल एनालिसिस। आज भी वो जीटीए और कनेडियन रियल एस्टेट मार्केट की ताजा हलचल, नए ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज पर रोशनी डालेंगे और सबसे खास बात, आपके सवालों का जवाब देंगे लाइव ऑन एयर। तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कॉल कीजिए स्टूडियो लाइन पर ऑन 416-593-0055, दैट्स 593-0055। सबरवाल जी तकरीबन 4:50 तक हमारे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो कॉल करके अपने क्वेश्चंस पूछना ना भूले। सबरवाल जी रेडियो वॉइस पर हार्दिक स्वागत है आपका।
8: थैंक यू वेरी मच सक्सेना साहब, एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सक्सेना साहब
7: जी। सबरवाल जी एक हफ्ते, वैसे तो लगता है कि कम समय है, लेकिन एक हफ्ते में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, तो प्लीज हमारे श्रोताओं को अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाने दें और हम सभी को रियल एस्टेट की कुछ खास अपडेट दें प्लीज।
8: जी ये अभी मई का डाटा भी आ चुका है और आपको पता होगा लास्ट वीक हमने अप्रैल का डाटा बताया था, 10 साल के एवरेज में जो फैमिली सिंगल फैमिली सेल्स सरपास कर गई थी और उसका डाटा मैंने लास्ट वीक सरप्राइज आपसे शेयर किया था। तो मई का डाटा जो ट्रब का आया है वो फिर एनकरेजिंग है, बड़ा जबरदस्त। तो यहाँ पर बताया गया है कि ट्रब के हिसाब से अभी मई के महीने में 6.3% सेल जंप हुई है कंपेयर टू मई 2025।
7: यानी कि ट्रब का मतलब है, सॉरी सबरवाल साहब जो हमारे श्रोता नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, ट्रब है टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड,
8: टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड। अब इसके अंदर एक आर एक्स्ट्रा आ गया, पहले सिर्फ TREB था, अब TRREB हो गया, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड हो गया इसका नाम। और ये जीटीए की मैं खबर आपको दे रहा था कि मई के महीने में भी जंप आया है 6.3% का, और अगर हम इसको सीजनली एडजस्ट बेसिस पे अगर ट्रांसलेट करें तो ये 10% का जंप आया है फ्रॉम अप्रैल, विच इज ए वेरी गुड साइन। और ये मंथ ओवर मंथ जो बढ़ा है ये जुलाई 2025 के बाद इतना ज्यादा बढ़ा है. दिस इज द स्ट्रांगेस्ट आफ्टर जुलाई 2025. और इससे भी एक बेटर खबर ये आई है कि न्यू लिस्टिंग जो है वो कम आई है मार्केट में. वो कम आई है 17,000 समथिंग आई है. इस डिक्लाइन जिसके अंदर 18.9% का हुआ ईयर ओवर ईयर. इट इज अगेन ए गुड साइन कि मार्केट में इन्वेंटरी कम होती जा रही है. और ये इन्वेंटरी अगर आप मंथ ओवर मंथ देखें तो अप्रैल से 2.1% ड्रॉप हुई है. स्प्रिंग सेल्स जो है वो एक स्ट्रांग मैं कहूँ कि रास्ता अपना रही है, स्ट्रांग सेल की तरफ जा रही है. और ये भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि वी हैव नाउ गुड सीजन अहेड. 2026 तक ये सीजन जो है ना, इस साल का आगे का तो प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती. नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर विल बी गुड. ये भी एक बड़ी अच्छी एक जो है ना एक खबर शेयर की गई. और ये टोरंटो का मतलब एक बात और बताना चाहूंगा इसके अंदर मैं, जो इन्वेंटरी लेवल था वो 20,000 से नीचे आ गया. यानी कि जो 24,000 से ऊपर चला गया था वो 20,000 से नीचे आ गया, 19,047 समथिंग आ गया. यानी कि इन्वेंटरी भी कम हो रही है. तो मुझे लग रहा है कि जो हम पहले से प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2026 से हालात कुछ अच्छे होते हुए नजर आएंगे, वो नजर आने शुरू हो गए. जी
7: सबरवाल साहब, मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन इस पे ये था कि ये इन्वेंट्री जो कम हो रही है ये ओवरऑल कम हो रही है कि कॉन्डो मार्केट में ज्यादा कम है और डिटैच्ड और सेमी डिटैच्ड में कम है थोड़ा?
8: मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर ही दे देता हूँ. 19,044 जो है टोटल इन्वेंट्री रह गई. एंड ये पिछले 22 महीनों में सबसे लोएस्ट आगे रही है. और मैं बता दूं कि इसके अंदर जो कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट है वो 13,331 है और जो सिंगल फैमिली होम्स है वो 5,713 है. यानी कि दोनों की इन्वेंट्री कम आ रही है.
7: ओके, विच इज अ गुड पॉजिटिव न्यूज. गुड, पर यही इसी पॉजिटिव न्यूज के साथ एक और न्यूज भी आई थी सबरवाल साहब पिछले हफ्ते या अर्ली दिस वीक कि वी आर नाउ ऑफिशियली इन अ टेक्निकली इन अ रिसेशन. तो ये दोनों चीजें
8: कहा जा रहा है. यू आर राइट
7: जी,
8: टेक्निकल रिसेशन कहा जा रहा है पर इससे इकोनॉमी सहमत नहीं है, ना ही हमारी बैंक ऑफ कैनेडा इससे सहमत है. पहले तो मैं बता दूं स्टैट्स कैनेडा ने जो कंफर्म किया 29 मई को 2026 में कि फर्स्ट क्वार्टर जो है वो भी हमारा डिक्लाइन हुआ है 0.1%. ओनली 0.1% कम तो हुआ है. और फोर्थ क्वार्टर जो था 2025 का वो 1% डिक्लाइन हुआ था जीडीपी. राइट
7: जी.
8: तो टेक्निकली इसलिए इसके लिए आगे वर्ड लगा दिया जाता है कि जब दो क्वार्टर लगातार ये नीचे की तरफ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसको टेक्निकल रिसेशन कह देते हैं. लेकिन लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इसको हमें टेक्निकल रिसेशन का लेबल नहीं देना चाहिए. क्योंकि ये सिर्फ जीडीपी की बात हो रही है, आगे हमें और भी चीजें देखनी है. इसको थोड़ा लंबे समय के हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हालात कुछ अलग से भी हैं. जैसे हाउसिंग थोड़ी कम है, गैस प्राइसेस जो है, पेट्रोल देखिए अभी अभी आपको आपने देखा ही होगा जो ईरान ने भी एक और पाबंदी लगा दी मंडे को, आपने देखा होगा संडे में उन्होंने कहा कि वो बबल मंदीप स्ट्रेट, बबल मंदीप ऐसा करके कुछ नाम है उसका.
7: जी जी जी जी.
8: उसमें भी उन्होंने एक्टिवेट कर दिया कि अनाउंसमेंट कर दी कि यहाँ पर भी हम कुछ निकलने नहीं देंगे. तो उसके वजह से देखा आपने 10-10 सेंट गैस के प्राइस फिर बढ़ गए. तो ये टेम्परेरी इसको माना जा रहा है, परमानेंट नहीं माना जा रहा. तो ऊपर से जॉब वगैरह की फिगर देखनी ये बहुत जरूरी है. और इसीलिए इसको बल्कि जो बैंक ऑफ कैनेडा की जो डिप्टी चीफ है रोजर्स, उन्होंने भी बड़ा क्लियर कह दिया कि ये जो है इसको मैं भी रिसेशन नहीं मानूंगी. आपने इसके आगे टेक्निकल वर्ड लगाना तो बेशक लगा दो. उन्होंने इसको लाइट में देने का आगे आपने टेक्निकल वर्ड लगाना तो बेशक लगा दो, लेकिन जो है ये मेरे हिसाब से अभी जो है वो रिसेशन जो है ना नहीं, इसको नहीं मान लेना चाहिए. कुछ बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने इसके अंदर कही और अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी कह दूंगा. जी
7: जी बिल्कुल. यहाँ हमारे सुनने वालों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि पीके सबरवाल जी की जैसी एक्सपीरियंस और तजुर्बा आपको नहीं मिल सकता। यहां आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, बस आपको फोन उठा के स्टूडियो को कॉल करना है। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। वंस मोर, स्टूडियो नंबर इज 416-593-0055। लाइन्स आर ओपन, वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल एंड सबरवाल जी विल बी विद अस टिल 4:50 PM टुडे। सबरवाल जी, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि आजकल बहुत से यंग कपल्स 2-3 साल से वेट कर रहे हैं कि आज के मार्केट में खरीदें या ना खरीदें, तो आपके अनुसार आज के मार्केट में फर्स्ट टाइम बायर्स की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है या क्या है?
8: आज ना खरीदना ही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये वो लोग जो कह रहे हैं कि अभी भी नहीं हम खरीदेंगे, अगर तो आप नहीं खरीद सकते वो तो डिफरेंट एक चैप्टर हो गया, खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर खरीद सकते हैं और अगर नहीं खरीद रहे तो इस बात को आप 3-2 साल के बाद याद करोगे कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में आई थी जो हमारे हाथ से निकल गई, और वही आपस में दोस्तों से बातें करेंगे, यार उस वक्त मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, उस वक्त मैं सोच रहा था और गिरेगा, ये बाद में दुखी होने वाली बात हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि 26 जुलाई, जिसकी ऑफिशियल मैं अनाउंसमेंट और एड आपके चैनल के थ्रू करूंगा, 26 जुलाई को, जैसे आपको पता है कि हर साल मैं 2-3 सेमिनार करता हूं, इस 26 जुलाई संडे को मैं सारे दिन का एक सेमिनार करूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स एंड फॉर द इन्वेस्टर्स, और ये ये ये ये फ्री होता है हमेशा, और इसकी इसको रजिस्टर करना पड़ता है 26 जुलाई संडे, जो सुबह से शुरू होता है, सुबह नाश्ते से शुरू होता है, उसके बाद फिर लंच तक चलता है, उसके बाद भी चलता रहता है। ये बड़ी एक नॉलेज वाली बात होगी, बड़े प्रोफेशनल्स यहाँ पर आएंगे और फर्स्ट टाइम बायर को बताया जाएगा कि आज क्यों, क्यों आज, आज क्यों, क्यों आज, क्यों नहीं कल, क्यों नहीं परसों, क्यों आज, क्योंकि इसके बहुत बड़े कई रीजन है, और प्लस इन्वेस्टर्स के लिए टाइम क्यों अच्छा है, फर्स्ट टाइम बायर के लिए क्यों टाइम अच्छा है। मैं यहाँ पर एक बात और छोटी सी बता दूं कि
7: सबरवाल साहब, एक मिनट आपको अगर मैं रोक टोक सकूं तो, क्योंकि एक कॉलर हमारा थोड़े वक्त से इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सीधे उनके पास चले।
8: जी जी जी,
7: हेलो, आप रेडियो वॉइस पे लाइव है, पीके सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
9: जी गुड आफ्टरनून सबरवाल जी।
8: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम क्या सर?
9: सर मेरा नाम सरदार खान है। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जो इन्वेंट्री कम हुई है, 10% सेल बढ़ी है, तो ये क्या जनरल पब्लिक की इन्वेंट्री सेल आउट हुई है या ये वो बिल्डर HST रिबेट गवर्नमेंट ने ऑफर किया है, बिल्डर्स की इन्वेंट्री कम हुई है?
8: दोनों दोनों दोनों है, दोनों है सर, एक नहीं है, दोनों। देखो एक का असर दूसरा पे, दूसरे का असर पहले पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जब ये HST जब का इन्होंने छोड़ दिया तो नेचुरली HST नए मकानों में, पुरानों में तो है नहीं, और जब जब नए मकानों के ऊपर HST हट गई और अप टू $130,000, तो उसकी डिमांड बढ़ी और वो जब इन्वेंट्री निकलेगी, सबसे बड़ा नासूर जो है हमारे हाउसिंग के अंदर इस वक्त बिल्डरों की इन्वेंटरी का था, क्योंकि बिल्डरों की इन्वेंटरी अगर नहीं निकलेगी तो बिल्डर नए घर कैसे बनाएंगे, और ये शॉर्टेज बड़ी जबरदस्त होने वाली है 3 साल बाद। मैंने आपसे पहले भी बात की थी हम लोगों ने यहाँ पर रेडियो स्टेशन में कि ये शॉर्टेज बहुत बड़ा एक नासूर बनने जा रही है। अब क्योंकि एक्टिविटी मार्केट में शुरू हो गई है तो रीसेल के भी अंदर भी जान आ गई है, रीसेल के अंदर भी सेल बढ़नी शुरू हो गई है। सारा डाटा जो है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, 13,300 समथिंग इन्वेंट्री घट के रह गई है कॉन्डो की, अपार्टमेंट की, और 5,700 समथिंग रह गई है सिंगल फैमिली होम्स की। जी सरदार खान जी,
9: थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
8: थैंक यू
7: कॉल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार खान साहब। सबरवाल साहब, एक कॉलर हमारा और वेट कर रहे हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। हेलो, आप रेडियो वॉइस पे लाइव हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, गो अहेड प्लीज।
10: हाँ जी सर, सबरवाल सर, क्वेश्चन था मेरा कि ये जो HST रिबेट का चल रहा था कि जो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं उनकी भी जो है HST रिबेट की बात चल रही थी कि शायद उनको भी मिल जाए, तो उसका क्या डेवलपमेंट है? यदि है तो
8: अभी कुछ नहीं मिल रहा, और लकीली फॉर्चुनेटली आज ही अभी I'm so glad to say that कि आज ही डनफोर्ड साहब से मुलाकात हो रही है हमारी कुछ लोगों की, आज ही हम मिल रहे हैं, इस शो के बाद इमीडिएटली मैंने निकल जाना है, तो शायद आज ही वो बात हो जाए, कोशिश की जा रही है। अब कब रिजल्ट आएगा पता नहीं, क्योंकि ये प्रेशर डाला जा रहा है इनके ऊपर कि उन लोगों ने क्या पाप किया है जिन्होंने 3 साल पहले बुक किया था, आज उनको तो HST देनी पड़ रही है, और जो लोग 1 अप्रैल के बाद बुक कर रहे हैं उनको नहीं देनी पड़ रही। तो ये ये ये ये एक बहुत जबरदस्त एक ये कंफ्लिक्टिंग सा एक डिसीजन है जिसके लिए देखो आज शायद बात हो जाए, कोशिश तो है, मुलाकात हमारी हमेशा होती रहती है सर जी।
10: थैंक यू,
8: थैंक यू।
11: कॉलर से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज अपना नाम बता दें तो उसे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। सबरवाल साहब को हमेशा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप स्टूडियो कॉल कर रहे हैं, सबरवाल जी को टेक्स्ट मैसेज भी भेज रहे हैं तो प्लीज अपना नाम लिखना ना भूलें। जी सबरवाल साहब
8: जी, तो मैं बता रहा था कैरोलिन जो रॉजर्स जो हमारी बैंक ऑफ कनाडा की जो सीनियर डिप्टी गवर्नर है, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अच्छी अच्छी फिगर आई है, दिल खुश होता है बता के कि ये जो है उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव ए क्रिस्टल बॉल, ये चीज किसी वक्त भी चेंज हो जाएगी, कल भी चेंज हो सकती है, जब ये जो वर्ल्ड जो टर्मवाइल सा हुआ पड़ा है उसका कोई फैसला होना शुरू हो जाएगा तो फ्यूल प्राइजेस कैन ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, उन्होंने कहा गिर भी सकते हैं इमीडिएटली जैसे ये रास्ते खुलेंगे तो इसीलिए अभी इसको टेक्निकल रिसेशन हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम थोड़ा और इसको देखेंगे, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ग्रोसरी का प्राइस बढ़ गया, फ्यूल की वजह से हर चीज बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, ग्रोसरी बढ़ गई, तो वो इसको हम अभी मापदंड नहीं मानेंगे, ये उनका कहना था। और प्लस साथ में मैं ये भी और बता दूं इसके साथ साथ अगर मैं जोड़ लूं कि भाई इंटरेस्टेड को भी अगर मैं जोड़ लूं तो इसके साथ
11: जी,
8: तो लोग तो ये कहेंगे जी हिसाब से तो इंटरेस्टेड कम हो जाना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा इकोनॉमिस्ट का मानना है, हम कहां बोल रहे थे कि इंटरेस्टेड बढ़ते बढ़ते रुक गए, अब बात हो रही है ये फिगर देखिए फिर घट जाना चाहिए जब इतना बड़ा बुरा हाल हो रहा, तो लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि हम इसको मान ही नहीं रहे रिसेशन इस वक्त, तो इसीलिए अभी इकोनॉमिस्ट का भी कहना है, उनका भी कहना है कि लगता है उनकी बातों से लग रहा था मेरे को कि शायद 2026 तक कोई इंटरेस्ट पे हाथ नहीं लगाया जाएगा। दस जून को भी जो भी आ रहा है डिक्लेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट वही का वही रहेगा जी।
11: ओके सो ओके एंड सबरवाल साहब एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। हेलो रेडियो वॉइस पर आप लाइव हैं, सबरवाल साहब से अपना क्वेश्चन लाइव पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
12: जी सर, सर पूछना है इमरान नाम है मेरा, पूछना है जैसे अभी
8: आपकी आवाज कट रही है, क्या बताया आपने नाम?
12: इमरान नाम है, चार
8: सवा इमरान जी, इमरान जी बताइए सर जी।
12: चार सवा चार लाख के जो कॉन्डो मिल रहे हैं वन बेडरूम के, तो अब वो मैं देखे वो बहुत छोटे छोटे हैं, क्या वो वर्क करते हैं इसमें?
8: नहीं सर, चार लाख इसीलिए तो है क्योंकि छोटे हैं, देखो सीधी बात है, अब अगर मान लीजिए आपने रहने के लिए लेना है तो देखना पड़ेगा आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो ये उतने छोटे नहीं है जितने छोटे हम पहले दुखी थे 300-300 स्क्वायर फीट के, नहीं ये बड़े हैं इस वक्त, आपको 500 स्क्वायर फीट का भी मिल जाएगा, और इतने जबरदस्त पैकेज आए हैं, दो बिल्डरों से मैंने पिछले 3 दिन के अंदर डील करी है, दो बिल्डरों के साथ, और उनके 7-8 प्रोजेक्ट के ऊपर डील करी है, बड़ी जबरदस्त डील करी है, आपको क्लोजिंग भी 4 साल के बाद देंगे और आपको रेंट की गारंटी देंगे कि जिसमें आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव आएगी 2 साल। आप बताइए कैसे गलत हो सकते हैं, 4 और 2 6 साल हो गए, 6 साल के बाद भी क्या आपकी डील नहीं होगी? मैं तो अभी 2 साल की बात कर रहा हूँ, और अलग अलग इंसेंटिव्स, कैश बैक्स, बहुत कुछ है, प्राइस लिस्ट अपने पास ले आइए और उसके ऊपर मैं कितने कम करा के दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिएगा, दंग रह जाएंगे आप। आप इमरान जी मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए फिर देखिए कैसे कैसे जो है ना जादू की पुड़िया खुलती है। 6 4 7 2 9 9 4 7 5 5
12: वर्क करता है, आप कह रहे हैं वर्क करता है, मतलब इस वक्त दे रहा है, सही है?
8: ये वक्त अगर नहीं है तो फिर कोई वक्त नहीं है ना सर, मैंने बड़ा ओपनली ऐलान कर दिया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम दोबारा नहीं आएगा, मैं बहुत तंग हूँ फाइनेंशियली इस वक्त, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरीद ली, इस वक्त तंग होने के बावजूद मैंने खरीद ली बहुत सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तंगी जो है ना, मैं बताऊं मेरी लाइफ में ये 8वां रिसेशन है और हर रिसेशन के ऊपर मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है, क्योंकि मैंने बेचने की बजाय उल्टा खरीदना शुरू कर दिया, और मैं सबको कहता हूं अगर आप खरीद नहीं सकते तो एटलीस्ट बेचो मत, और रोक लो और आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। देखो मैं एक कहावत बड़ी मशहूर है, एवरीथिंग विल चेंज वन डे, सो एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन, सच्चाई को समझिए और चलते रहिए, रोते रहना कि अब क्या होगा क्या होगा, नो, वक्त के साथ चलते रहो, और कदम बढ़ा के चलते हैं और सबके साथ आप देखना वक्त के साथ हम क्या करते हैं गलती कि वक्त के पीछे पीछे चलते हैं और मार खा जाते हैं। अगर वक्त के आगे नहीं चल सकते तो एटलीस्ट वक्त के साथ साथ तो चलो। जी
12: एक चीज और पूछते हैं कि जैसे कॉन्डो लेते हैं तो लगे उसकी जो मेंटेनेंस फीस होती है वो तकरीबन वो भी 1.5-1.5 लाख या 1 लाख डॉलर की जो मॉर्गेज आती है तकरीबन उतनी आ जाती है। वो
8: समझा नहीं बात। मैं बड़ी क्लियर बात करता हूँ, अगर अगर इजाजत दें अमिताभ जी, अगर कोई और कॉल नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं इनको जरा।
11: जी बिल्कुल बिल्कुल
8: सर मेरी बात सुनिए, मैं 500 स्क्वायर फीट के कॉन्डो की चलो बात करता हूँ आपके साथ, उसकी मेंटेनेंस फीस महीने की है लगभग 300 से लेकर 325 डॉलर। अब आपको मैं बताता हूँ इस कॉमन एलिमेंट सारे मेंटेन है, वॉक वे ये वो, आपका सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है, आपको सब कुछ मिला हुआ है, स्विमिंग पूल है, हेल्थ क्लब है, सब कुछ है। आप किसी हेल्थ क्लब को ज्वाइन कर लेते हो तो सर 125 डॉलर एक बंदे की फीस आती है, ये पूरा परिवार आप इसको फ्री यूज कर रहे हो 5-स्टार होटल को, नंबर वन। नंबर टू इंश्योरेंस कवर्ड है, आप आज इंश्योरेंस कराओ तो आपकी इंश्योरेंस 80 से लेकर 100 डॉलर लगती है, ये इंश्योरेंस इसी के अंदर कवर्ड है।
12: अच्छा,
8: आपके पास 4 नौकर बैठे हुए हैं, बल्कि पूरी बिल्डिंग में तो आपके पास 40 नौकर बैठे हुए काम करने वाले, और आप 5-स्टार होटल में रह रहे हो और 300 डॉलर महीने का मतलब होता है 10 डॉलर रोज के, ये भी चुभ रहे हैं आपको?
12: हाँ ये तो ज्यादा नहीं है, सही बात है आपकी, ये ज्यादा नहीं है। ठीक है
8: ठीक है सर
12: जी
8: जी सही सही। चलो मैं खुद अभी कॉन्डो में मूव कर गया हूँ, मैं खुद मूव कर गया हूँ कॉन्डो में, जितनी सिक्योरिटी स्पेशली इस एज के अंदर कॉन्डो अपार्टमेंट के अंदर है वो डिटैच घरों में बड़े घरों में नहीं है। मैं बहुत सिक्योर हूँ, यहाँ पर वर्दी पहन के बैठे हुए सारे, सुबह शाम दिखने वाले बैठे हैं, एक मिनट में कॉल करो, कोई गार्बेज का चक्कर नहीं है, कोई घास काटने का चक्कर नहीं है, कोई स्नो उठाने का चक्कर नहीं है, सारा कुछ तो कवर हो गया इसके अंदर। आप कल को स्नो उठाने के लिए और घास काटने के लिए रख दो, वही आपसे आपकी एवरेज महीने की 100 डॉलर पड़ जाती है, साल की 1200 डॉलर पड़ जाती है एवरेज, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सस्ता पड़ेगा आपको।
12: सही सही आपका सही बिल्कुल सही।
11: बहुत बढ़िया सबरवाल साहब, कैसे माइक्रो लेवल पे जाके आपने अच्छे से समझा दिया हाउ इट मेक्स सेंस टू गो फॉर द
8: 90% से ज्यादा प्रॉपर्टीज मेरे पास कॉन्डो अपार्टमेंट्स हैं, और इन कॉन्डो अपार्टमेंट ने ही मुझे कमा कर दिया है सबसे ज्यादा। मैं कैसे गलत बोल दूं मुझे बताइए आप। हम वहां वो इंसान जो मार खा लेता है वो फिर ब्लेम कर देता है, वो मार क्यों खा लेता है क्योंकि वो गलत टाइम पे बेच देता है, जब नहीं बेचना चाहिए यही है वो बेच देता है। खरीदने में भी गलती 5-7 साल में एक बार हो जाती है, जैसे आपसे लोगों ने 4-5 साल पहले लिया, किसी को नहीं पता था कि ये मार पड़ेगी, लेकिन ये वक्त है उनका रोकने का, बजाय रोकने के वो बेच रहे हैं पैनिक होकर, और इन्वेस्टर कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे इन्वेस्टर मैंने सुबह के शो में कहा जिसने बोला पीके यहाँ पर 5 मिलियन पड़े हैं, जो डिस्टर्ब सेल वाले उठा लो जितने कांडो उठाने उठा लो। अब बताइए आप लोग कमा रहे हैं ना, हम लोग पैनिक होकर बेच देते हैं, वहां पर मार खा जाते हैं, हम लोग सही वक्त पर सही कदम नहीं उठा पाते और ब्लेम फिर हम दे देते हैं सबको लोगों को।
11: राइट, भेड़ चाल वाला थोड़ा सा मामला है।
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
11: जी ठीक है, आगे बढ़ते हुए सबरवाल साहब एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि हमारी कम्युनिटी में ज्वाइंट फैमिली लिविंग का ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है, तो क्या आपको मल्टी जनरेशनल होम्स की डिमांड में ग्रोथ नजर आ रही है?
8: बिल्कुल आ रही है, और ये कहते हैं ना कभी समय बड़ा बलवान, ये समय ने फैमिली को फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मेरे अपने जानने वाले कई परिवारों के अंदर उनके बच्चे जो डाउनटाउन में रहते थे वो वापिस आ गए अपने पेरेंट्स के पास। देखो कई बार क्या होता है, कोई चीज अच्छे के लिए हो जाती है, जब अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो पेरेंट्स के पास आ गए, वहां पर पेरेंट्स बड़े खुश बच्चे हमारे पास आ गए, और हालांकि कई जगह पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को रहना, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मैं कहता हूँ जी नहीं मेरे को बच्चों के साथ अभी नहीं रहना, मैंने उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, दे आर सेटल्ड, उनके अपने बच्चे हैं बच्चों के बच्चे हैं, मैंने तो अपनी बीवी के साथ अकेले मौज करनी है, मेरी ये सोच है। लेकिन अभी जब मैंने अपना घर बेचा वैसे ही मेरे को कुछ महीनों के लिए 4-5 महीने के लिए अपने बेटे के यहाँ रहने का मौका मिला, क्या मजा आया हमारा के जब सवेरे मेरे ग्रैंड किड दादा दादी करके आके गोदी में बैठ जाते हैं, और वो अगर मान लो मेरा गिलास भी पानी का फेंक देते हैं या मेरा ऐनक भी मेरी तोड़ देते हैं तो मुझे दुखी नहीं होता, मुझे लगता है बड़ा मजा आ रहा है। तो वो रहना सहना ही अलग है, परिवार इकट्ठे हो गए और क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इसीलिए पेरेंट्स के साथ मिलने का एक रिवाज सा शुरू हो गया, और ये ट्रेंड आई थिंक ये हमारे पुराने संस्कारों को वापस लेके आ रहा है इनडायरेक्टली।
11: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड सबरवाल साहब, कुछ इन्वेस्टर्स अब अल्बर्टा और कैलगरी मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं, क्या जीटीए रियल एस्टेट अब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे स्ट्रांग ऑप्शन है या वी नीड टू लुक एट अदर प्लेसेस इन कनाडा एज वेल? आपका क्या?
8: आपने जो खबर दी ना सर, कर देख रहे हैं, तो जिसने आपको क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन एक साल पुराना है। आज अल्बर्टा कैलगरी से लोग वापस इधर की तरफ देख रहे हैं, अब तक वहां जा रहे थे और अब क्योंकि वहां पर भी आग लग गई प्राइसेस की और यहां पर प्राइस ज्यादा नीचे गिरा है तो कहते हैं कि वहां जाके क्यों है। और अब जो है अल्बर्टा स्ट्रांग इकोनॉमी इसलिए होती जा रही है क्योंकि गैस का चक्कर है और वहां पर जो है आपको पता है पेट्रोलियम का भंडार है, तो ये टेम्परेरी है। आज आपको अल्बर्टा कैलगरी के प्राइस के ऊपर जीटीए से 100 किलोमीटर बाहर चले जाओ आपको मिल जाते हैं प्रॉपर्टियां, मिल जाती हैं 50-60-70 किलोमीटर आगे चले जाओ। तो लोग तो इस वक्त थोड़ा सा वापस की तरफ आ रहे हैं, मैंने अभी जो रिसेंटली नोट किया है।
11: जी, और एक कारण ये भी हो सकता है कि अल्बर्टा में जो रेफरेंडम की बात चल रही है, पॉलिटिकल गेम्स जो चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स तो ऐसी खबरों से तो फिर होशियार रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को,
8: बिल्कुल दूर रहते हैं। और चलते चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी अगर और भी किसी को समझना है तो मेरी अभी ब्रॉडकास्ट हुई थी, हमारे लिंटारा के चेयरमैन जो है मार्क मेडलबम, उनके साथ मेरी अभी ब्रॉडकास्ट हुई थी, मेरे बेटे के सौरभ सबरवाल ने भी की थी 10-15 मिनट की, दोनों की 10 मिनट मेरी उनकी, वो मेरे इंस्टाग्राम में छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है सब कुछ। मेरे इंस्टाग्राम पीके सबरवाल ऑफिशियल, पीके सबरवाल ऑफिशियल, वहां जाइए और देखिए इंटरव्यू में क्या उन्होंने बोला और क्या मैंने बोला। कई लोगों को फैक्ट समझ आया है, ये सच्चाई कई लोगों को पता चलेगी आज क्या हो रहा है और पहले क्या हुआ था। पीके सबरवाल ऑफिशियल वहां जाइए और देखिए चेयरमैन के साथ मेरी क्या बात हुई है और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया, या उन्होंने क्या क्वेश्चन किया और मैंने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया और मेरे बेटे सौरभ सबरवाल ने क्या जवाब दिया। यू विल सी लॉट मेनी थिंग्स। ये छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम में आ रहे हैं, आप जरा उसको वॉच करिए, पीके सबरवाल ऑफिशियल। जी, थैंक यू वेरी मच अपना अमिताभ जी।
11: जी सबरवाल साहब, मैं बस आपसे, अगर आपके पास 2 मिनट है तो आपसे एक और मुद्दे पे बात करना चाहता था, रियल एस्टेट से जुड़ा नहीं है ये। आई डोंट नो अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं कि नहीं, तो अगर आप नहीं भी करते लेकिन आपने फिर भी एक 15 साल के बच्चे के बारे में सुना होगा जो आजकल क्रिकेट की दुनिया में जिसने आग लगा रखी है,
8: सूर्यवंशी। हाँ जी, हाँ जी, कि मैं क्रिकेट लवर तो हूं ही हूं और मैं खेलता भी था, लेकिन अच्छा, मैंने उस दिन अपनी वाइफ को बोला है कि मेरा अब जो मैं इंडिया जाऊंगा सबसे पहला मेरा टारगेट होगा सूर्यवंशी को मैं प्यार करके आऊंगा।
11: अरे वाह, अरे वाह,
8: ये मैं मिलके आऊंगा उसको, बच्चे को देखो। अच्छा, वो अब हेल्थ में भी इंडियन हेल्थ के ऊपर वो ब्रांड एम्बेसडर उसको बना दिया शायद, ठीक है जी। तो क्या बात है, देखो 15 साल के बच्चे ने तहलका मचा के रख दिया और ही डिजर्व्स एप्रिसिएशन। और मैंने टारगेट बनाया हुआ कि मैं इसको जाके अभी मिलके आना है जरूर जब मैं जाऊंगा।
11: और मैं एक बात बताऊं सबरवाल साहब, उसका गेम तो है ही तबाही वाला, मतलब कितने जितने भी अवार्ड्स आईपीएल में हो सकते थे उस 15 साल के बच्चे ने जीत लिए, लेकिन जो मेरे को उसकी सबसे बढ़िया जो चीज लगी है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल अग्री विद मी, कि उसकी जो हम्बलनेस और उसकी जो अपब्रिंगिंग है। आप मैच में काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था आईपीएल के मैचेस, तो मैच से पहले जितने भी अच्छे बड़े हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हुए हैं जैसे सुनील गावस्कर जी, इरफान खान, वो आके अपनी प्रैक्टिस छोड़ के पहले आके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेता है।
8: वही दिल उस चीज ने इतना इमोशनल किया कि वो आके सबसे पहले पैर छू रहा है और पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले रहा है, और जो बड़ा सीनियर प्लेयर और सीनियर अंदाजा है उसके पहले पैर छूता है, हम्बलनेस ये होती है। मेरा खुद का मेरा अपना ग्रैंड सन यहाँ का पैदा हुआ, यहाँ का बड़ा है, जब किसी फंक्शन वगैरह में मेरे साथ जाता है तो बुजुर्गों के पैर छूता है सबसे पहले, हमने इसको नहीं सिखाया, पैर छूता है उसको, जो मेरे फ्रेंड्स इतना प्यार करते हैं कि देखो ये चीज कितनी चीज बच्चे के अंदर आई है, यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा, यहाँ का पैदा हुआ बच्चा, और यहाँ पर अब जब हमारे साथ मिलता है तो बुजुर्गों को गले मिलता है और पैर छूता है। ये चीज जो है संस्कार होने बहुत जरूरी है, और इस बच्चे ने, सूर्यवंशी ने, इस बच्चे ने हमें जीत लिया, उसने
11: पूरी तरह से,
8: और दुनिया को क्या जीता उसने, तो हमें भी जीत लिया
11: पूरी तरह से। और इस और ऐसी सब जब चीजें होती हैं, संस्कार हम देखते हैं, तो हमें ये भी कॉन्फिडेंस होता है कि ये बच्चा कितना भी सक्सेसफुल हो जाए ये बिगड़ेगा नहीं, ये ग्राउंडेड ही रहेगा, बिकॉज इसके संस्कार ही ऐसे हैं कि ये कभी सक्सेस इसके सर पे नहीं चढ़ेगा।
8: उसकी शक्ल बता रही है, उसकी शक्ल बता रही है हम्बलनेस जो है, उसकी शक्ल बता रही है कि वो बच्चा कितना हम्बल और ये बिगड़ने वाले बच्चे में से नहीं है। वो उसके संस्कार इतने पक्के उसके माँ बाप ने और हालात ने उसको दे दिए कि वो अब उसमें अडिग रहेगा, मुझे लगता नहीं कि वहां से वो इधर उधर हिलेगा।
11: हम सबकी तो कड़ी नजर रहेगी और मतलब हमें खुशियां देते रहे। हम लोग बहुत लकी हैं कि इस युग में पैदा हुए हैं कि हमने सुनील गावस्कर भी देख लिए, सचिन तेंदुलकर भी देख लिए, विराट कोहली भी देख लिए, जसप्रीत बुमराह देख लिए और अब हम वेट कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी
8: का मौका मिला। मैं तीनों जनरेशन का हूँ आदमी, जब मैं यंग था तो मैं गावस्कर को भी मिल चुका था, बड़ा अच्छा लगा था। मैं गावस्कर को बड़ा बहुत ज्यादा उसको चाहता था और कई साल पहले जब तेंदुलकर छोटा सा बच्चा आया था 17-18 साल का, तब उसको भी मिलने का मौका मिला था, मुझे बहुत इंप्रेस किया था और अब जो है ये सूर्यवंशी, इसको मैंने जाके जरूर मिलना है।
11: चलिए, वी विश हिम ऑल द बेस्ट सबरवाल साहब, और सबरवाल साहब से हमारे लिसनर्स अगले वेंसडे फिर से जुड़ सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो आप उनसे पूछ सकते हैं। सबरवाल जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वेंसडे इसी टाइम पे आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत
8: थैंक।
11: चलिए चलते हैं सीधे एक ब्रेक की ओर।
6: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
13: हाँ जी बिंद्र भाइयों, ये वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन। रॉजर्स की बेहतरीन डील से आपने ली, वकार जी से कांटेक्ट कीजिएगा। वकार जी है रॉजर्स एम्प्लॉई और आपके सिस्टम में भी एक्सेस है, इसलिए आपको देते हैं सुपर डुपर ही डील्स। जरूर डायल कीजिएगा 6478648000 6478648000। सीधे चलते हैं वकार जी के पास। वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी जरूर दीजिएगा। ओवर टू वकार खान जी।
14: थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको तमाम लिस्टर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतिन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है, बहुत सारी प्रमोशंस हैं, बंडल ऑफर्स हैं, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ हैं। इसमें पैकेज है, टीवी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का सुपर फास्ट, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 930 मिनट हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के, आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें। बहुत ही स्पेशल ऑफर है, अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट लेटेस्ट मॉडल अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत चीप रेट में मिल जाएंगे। रॉजर्स के सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है। और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है। प्लीज कॉल कीजिए, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, जरूर एक बार कॉल करें। नंबर है मेरा 6478648000 6478648000। मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 6478648000 6478648000।
13: वंडरफुल वकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदर भाइयों, जरूर कॉल करके बात कीजिएगा वकार जी से, 6478648000 6478000। यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

until we meet again on the day, जहाँ दिन तो वैसे एक ही है, but looks like उसकी intent जो है ना, वो भी same सी है. A healthier life for each one of us. पर तरीके, वजह, बहाने, वो तीन तीन अलग अलग हैं. जैसे कि एक ग्लोबल रनिंग डे है, दूसरा वर्ल्ड बाइसिकल डे है और तीसरा क्लीन एयर डे है. तीनों है टुडे और तीनों एक ही लक्ष्य को टारगेट करते हुए होते हैं, है ना, जहां आवर हेल्थ एंड क्लीन एयर गोज हैंड इन हैंड. सो ऑन द साइकिल चलाओ या दौड़ लगाओ, पर हेल्दियर लाइफस्टाइल जरूर अपनाओ. एंड यस, क्लीनर एयर वो पाओ वाली नोट. दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सिंग. वही जो ओपरा विनफ्री ने कहा था. पूछे क्या उन्होंने कहा था? रनिंग इज द ग्रेटेस्ट मेटाफर फॉर लाइफ. पूछे क्यों? बिकॉज यू गेट आउट ऑफ इट व्हाट यू पुट इनटू इट. बाकी जब भागने की बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि कई बार सड़क पर दौड़ने के अलावा हम जिंदगी में भी ना बस भाग ही रहे होते हैं, आनन फानन यहाँ वहाँ, वर्क पर, काम की रेस, स्कूल में मार्क्स की रेस, रिलेटिव्स के बीच अच्छा दिखने की रेस, नहीं तो कभी पढ़ाई से, कभी जिम्मेदारियों से, कभी झगड़े मनमुटाव से, कभी पास्ट से, कभी अपनों से, और कभी इवन अपने खुद से भाग ही तो रहे होते हैं, नहीं? सो सड़क पर भागे या जिंदगी में, मेक श्योर जिंदगी से ना भागे. And yes, don't forget to look for those signs and signals.

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 PM. राइट फिल्मी नुक्कर सीएमआर 101.3 एफएम पर आप हैं स्वाति और पायस्विनी के साथ एंड टाइम है फ्रेश ब्रीज न्यू रिलीज का। तो गाना जो हमने आज चुना है इट्स फ्रॉम द अपकमिंग सीक्वल ऑफ द एक्शन कॉमेडी फिल्म वेलकम। उसका जो सीक्वल आ रहा है वेलकम टू द जंगल, उसका है। तो इस बार ये आपका स्वागत कर रहे हैं जंगल में। काफी आर्टिस्ट इसमें सेम है तो काफी सारे नए, एक्चुअली काफी सारे एडिशनल आर्टिस्ट हैं, नए तो नहीं कहूंगी एडिशनल आर्टिस्ट हैं। कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो आपने हमेशा देखी हैं, चेरिश करी हैं, वो इस वेलकम वाले सीक्वल में आपको दिखेंगी। कहानी है बेसिकली दो पुलिस ऑफिसर्स की जो एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, और इसमें केओटिक कॉमेडिक टर्न तब आता है जब एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है, जो कि अक्षय कुमार बने हैं, कि उस क्रिमिनल से तो भाई उनका कनेक्शन पुराना है, वो भी पर्सनल। फिल्म में 30 वेल नोन एक्टर्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सारी लिस्ट यहाँ नहीं पढ़ने वाली हूँ कौन कौन से एक्टर्स हैं। हालांकि ये जो गाना मैं प्ले कर रही हूँ ना, इसको अगर वीडियो में आप देखेंगे तो आपको अधिकतर एक्टर सारे दिख ही जाएंगे कौन कौन से हैं। उदय मजनू की जो ओरिजिनल फिल्म की जोड़ी थी नाना और अनिल कपूर वाली, इट इज रिप्लेस

by Munna and Circuit ki jodi as Uday and Majnu in this sequel. Gana jo main film se sunwane wali hu, title track hai with all the stars in it. High energy track hai, bahut sari dhunen aapko isme mix milengi with original welcome title song ki dhun bhi. रिक्रिएट किया गया है तो कुछ नया डाला है, लिरिक्स सहित कुछ पुराना उठाया है. और वो हाइलाइटेड पंच लाइन जो थी ना ओरिजिनल फिल्म में, आलू ले लो कांदा ले लो, जो कि नाना पाटेकर फिल्म में एक्टिंग करते हुए शूट करते हुए बेचते हैं और बोलते हैं, रिमेम्बर, वो इस गाने में उन्होंने कहीं फिट करी है और मजेदार लग रही है. ओवरऑल इट्स ए कलरफुल नॉस्टैल्जिक मसाला एंटरटेनर टाइप ऑफ सॉन्ग. शान, प्रिया और विक्रम की आवाज है, म्यूजिक विक्रम का ही है इसमें रिक्रिएटेड, और जो नए वाले लिरिक्स हैं वो मेघा बाली के हैं. आप सुनिए, हमें बताएं आपको कैसा लगा ये वाला वर्जन. स्टूडियो का नंबर 4165930055.

अच्छा, अब तक आपके हाथ में वो लूनी लगी क्या जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 को सेलिब्रेट करते हुए रिसेंटली लॉन्च करी गई थी? आई गेस इट्स गोइंग टू बी अ कलेक्टेबल फॉर फीफा और सॉकर फैंस मेरे ख्याल से, एंड ऑफ कोर्स फॉर अ प्राउड कैनेडियन एज वेल। ओनली 3 मिलियन ये लिमिटेड एडिशन के अंतर्गत बनी है, जो चेंज के बदले आपके हाथों में जल्दी ही आ सकती हैं। और इसके 2 वर्जन्स बने हैं, एक रेड ऑरेंज व्हाइट कलर का और एक रंगहीन, बोले तो नो कलर्स वाला। बाकी दोनों में सेम टू सेम मेपल लीफ है, मूविंग सॉकर बॉल है। टोरंटो वैंकूवर एज दो होस्ट सिटीज आपको मिलेंगे इन डिजाइन विद 2026 ईयर मार्क्ड एज वेल। अब मैं ये सोच रही थी कि क्या करेंगे आप जेब में आते ही, कि क्या चलेगा इसका पर जादू और लस्सी चाट खाने के लिए दिल हो जाएगा बेकाबू कि चलो खर्च कर डालो, या रखोगे इसे संभाल कर तुम एज पर लकी टोकन और एज अ प्राउड कैनेडियन, या खर्च करके बोल ही दोगे कि क्या करें भाई, इकोनॉमी ही नहीं माई वॉलेट इज ऑल्सो ब्रोकन। शेयर शेयर।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट हॉट कैशबैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500. है ना आइसिंग ऑन द टॉप. कॉल अमित खुराना एट 647-341-2785
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: like cake. It's Nukkad, hit after hit.
1: Hit ya miss me, today I'm going to review the taza tareen released trailer of June 19th ko release hone wali rom-com sequel Cocktail 2. Ab ise sequel kyun kaha ja raha hai, rather spiritual sequel, kyunki मैं सोच रही थी ना तो इस स्टोरी से कोई कनेक्शन है पुरानी, ना कैरेक्टर्स डिफरेंट है, मतलब उनसे कोई कनेक्शन है. अब वजह ये है क्योंकि डीएनए या वाइब कह लें सेम है, सेम क्रिएटिव माइंड्स हैं. डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिनेश और होमी, प्रीतम एज म्यूजिक डायरेक्टर. और वाइब की बात करें तो अर्बन ग्लॉसी इमोशनल लव ट्रायंगल, दो लड़कियां एक लड़का, वो सब वैसे ही है. दोस्ती प्यार सिचुएशनशिप का कैओस, वो वैसे ही है. और इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूटिंग खूबसूरत सी, इस बार इटली सिसिली में बहुत सारी हैं, तो अच्छी अच्छी जगह आपको देखने को मिलेंगी, वो सेम है. जेजी और उनकी कंफ्यूज्ड इमोशनल रिलेशनशिप स्टेटस पर ही फोकस रहेगी विद एन अनकन्वेंशनल ट्विस्ट. अब वो क्या है, वो ना तो ट्रेलर रिवील कर रहा है ट्विस्ट के बारे में, क्लाइमेक्स के बारे में, ना कोई और. हालांकि अफवाहें ये जरूर है कि दो लड़कियों वाला रोमांस इसमें आपको देखने को मिल सकता है क्लाइमेक्स में. हालांकि जो इसके प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजान, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को. सो लेट्स सी कि क्या होता है. ट्रेलर ओवरऑल इज ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड गो लकी वाला वाइब देता हुआ विद फ्यू इंटरेस्टिंग पंचेस इन डायलॉग्स. जैसे कि प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं. एंड आई कुड एक्चुअली रिलेट टू दिस, लाइक यू नो प्यार जब दोस्ती बन जाए और दोस्ती प्यार, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि नाउ इट्स अ सिचुएशन. तो भाई इन्हें कोई बताए, शाहरुख बाबा बहुत पहले बता गए हैं कुछ कुछ होता है मैं कि प्यार ही दोस्ती है. एंड देन दिस डायलॉग जो ट्रेलर में था कि सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी के बाद तो भाई दवा भी जहर बन जाती है. तो कुछ डायलॉग्स एक्चुअली अच्छे हैं. ओवरऑल फील ऑफ द ट्रेलर इज वेरी विटी, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को हाईलाइट करती हुई, जहाँ कमिटमेंट में एक फोबिया होता है ना, और प्यार और दोस्ती के नाम पर कंफ्यूजन, वो है. शाहिद, रश्मिका और प्रीति अच्छे लग रहे हैं, ग्लैमरस एक्टर्स तो अच्छे हैं ही, पर समथिंग इज मिसिंग जब मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ, मुझे लगा. म्यूजिक ओवरऑल ठीक है, कॉकटेल वन का बहुत अच्छा था. तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें, जिसका बहुत फेमस ट्रैक था वन का, वो इसमें भी डाल दिया गया है रिक्रिएट करके, ये ट्रेलर में टीज करके उन्होंने बता दिया है. ओरिजिनल स्क्रिप्ट इम्तियाज की थी, इस बार प्यार के पंचनामा वाले लव रंजन की है, लिखते वो भी अच्छा है, तो होपफुली कुछ अच्छा किया होगा उन्होंने. ओवरऑल ट्रेलर से मुझे लग रहा है कि फिल्म देखी जा सकती है फॉर श्योर, बट यस इट मे नॉट बी एज गुड एज कॉकटेल 1. वो नशा शायद वो ना हो.

0: क्लियर।
1: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com।
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
4: Another Don clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: Let's turn it up.
8: Let's kick it up.
9: Let's shake it up.

Well, ये फिल्म एंटरटेनमेंट तो अच्छी खासी फ्लॉप हो गई थी, पर इसी गाने से टाइटल उठाकर फिल्म बनी वी दे दी वेडिंग 2018 में, जो कि फ्रेंडशिप की स्पिरिट को सेलिब्रेट करती थी मेनली. एक्चुअली आप देखें तो रोमांस पर तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, और ये फिल्म यहीं पर स्टैंड आउट करती है क्योंकि इट टॉक्स अबाउट कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर लड़कियों में भी होती हैं. फिल्म हैज कंप्लीटेड रिलीज एंड दिस सॉन्ग स्टिल गेट्स लॉट ऑफ तारीफें.

एंड अ क्विक रिमाइंडर, हर थर्सडे एट 6 PM हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोजा जी इन द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है और सुनाएंगे एक नई कहानी. दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय माय रियल को द रियल स्टेट कंपनी. माय प्रॉपर्टी माय चॉइस माय रियल को. सुनिएगा जरूर.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट हॉट कैशबैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500. है ना आइसिंग ऑन द टॉप. कॉल अमित खुराना एट 647-341-2785, 647-341-2785, और
1: विजिट अमित. लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, इट्स RJ Swati_Toronto।

चीजें बस एक बारी की होती हैं, एक बारिया फिर एक्साइटमेंट उनका खत्म हो जाता है, और कुछ बार बार की होती हैं, कितनी बार भी हो जाए इन लाइफ, बस मजा जो होता है उनका वो वहीं का वहीं रहता है जैसे कि पहली बार का. बीट द टेस्ट ऑफ दोज हमारे फेवरेट फूड्स, बीट गोइंग टू दैट वन फेवरेट स्पॉट ऑन द बीच और द माउंटेन जहां बैठ के सनसेट देखना अकेले या दुकेले बस अच्छा लग जाता है. बीट दैट गाना जो प्ले लिस्ट में लूप पे हमारी चलता है, और बीट दैट माँ की गोद पापा का कंधा, और बीट दैट दोस्त जिसे रोज मिलना, रोज की रोज बातें करना बहुत अच्छा लगता है. एंड बीट दैट फीलिंग ऑफ लव जब प्यार में पड़ना, गिरना, उठना बार बार किसी भी उम्र में बस बहुत अच्छा लगता है ना. लाइफ में कितनी ही चीज

0: चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई
4: और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
5: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
3: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
6: Another Dawn clean with the Dawn Dux.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

एंड दैट वॉज फ्रॉम कबीर सिंह, एक अलग ही टाइप का देवदास टाइप कैरेक्टर, जिसे प्यार भी नहीं हो पा रहा था फिल्म देखते हुए, पर उसको इग्नोर कर पाना भी क्वाइट मुश्किल हो रहा था. इट वॉज अ रीमेक ऑफ साउथ की फिल्म अर्जुन रेडी. फॉर्मूला फिट था तो फिल्म भी सुपरहिट रही, चाहे वो साउथ भाषा में बनी और चाहे वो हिंदी में. वन सच तेलुगु फिल्म इज रेडी, जो कि सुपरहिट रही जब बनी, और हिंदी में भी नाम सहित अडेप्ट कर ली गई विद सलमान खान इन द लीड रोल, और साथ में सुपर ड्यूपर गुड म्यूजिक. आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन 2011. माई फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द फिल्म इज कोई तो रोक लो, और फिल्म इज सुपर फन टू वॉच. कोई भी जब भी बोले रेडी देखने के लिए, आई एम ऑलवेज रेडी.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: घर कहीं भी लेना

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca. क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही आज ही अपॉइंटमेंट लें कॉल रमेश एट 416-990-2462 एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वे योर कार गेट्स It deserves.
4: नटवर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती
5: मगर क्यों पिताजी नहीं माने क्या
4: वो बात नहीं है हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो ना वो गाने बजाते हैं ना तुम अच्छा गाते हो
5: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा
3: हाँ सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा रेडियो CMR एट 5 PM योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव

सपने वालों को अब सामने आना ही होगा। आज ओंटारियो सरकार लॉन्च कर सकती है एक पब्लिक प्रोविंशियल वेबसाइट अबाउट हाई रिस्क ऑफेंडर्स। उनके बारे में सारी डिटेल्स वहाँ होंगी, डिस्क्लोज्ड कम्युनिटी नोटिफिकेशंस होंगे जो फिर शेयर की जाएंगी थ्रू इंडिविजुअल पुलिस वेबसाइट्स ऑन सोशल मीडिया। लेजिस्लेशन पास हो गया ना ये, तो नई वेबसाइट अप्रैल 2027 अगले साल तक ये ऑनलाइन भी कर दी जाएगी। इंटेंट वही है, सड़कें रहें सेफ और कम्युनिटी सुरक्षित।

Total Manukar, CMR 101.3 FM पर यू आर विद स्वाति एंड पायस मिनी. एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल, तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं. हमारा हैंडल रहता है RJ Swati_Toronto, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और. आप हर सोशल मीडिया पे हमसे RJ Swati_Toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं. दैट्स माई हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस. कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती है, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ. कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं. तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग, एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना. फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है. सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए. तो इट्स वेरी ईजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया. तो याद रखें RJ Swati_Toronto. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर. माई नंबर इज 647-830-5042. दैट 647-830-5042.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विथ $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353.
6: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
0: You are tuned into CMR at 5 PM with RJ Swati on Filmi Nukkad. It's the free time.

वेल, गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम, साउंड्स एग्जैक्टली सेम की अंडा पहले आया था या मुर्गी बोले तो। बाकी अंडे का फंडा वही जानते हैं जो इसका सेवन करते हैं मोस्टली, बाकी लोगों के लिए तो इट्स लाइक यू नो जैसे शेर के आगे आप घास डाल दिए हो, है ना। वेल, इट्स नेशनल एग डे टुडे एज वेल, जहां दिन कैसा भी हो आज इट्स गोइंग टू बी एक्सलेंट डे फॉर मेनी। सो ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद अंडे का फंडा। मिलते हैं फिर।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्ब मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मितावन देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोलकर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर है 905-257-1342।

0: FM.
1: News के लिए दावतिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. कुवैत में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में एक भारतीय शहरी हलाक जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए. कुवैत ने ईरानी सिफारत मिशन के दो अरकान को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क बदर कर दिया. उधर बहरीन के फौज ने भी ईरानी हमलों की कोशिशों को नाकाम बनाने का दावा किया है. सऊदी अरब और अमारात समेत खलीजी ममालिक ने कुवैत पर हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि ईरान की जारहियत के खिलाफ हम दोस्त ममालिक के साथ खड़े हैं. ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची ने कहा है कि किसी भी मुआनेदाना इकदाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा. अब्बास अराकची का कहना था कि अमरीका के साथ राबते मुनक़ता नहीं हुए लेकिन मुजाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं है. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनई अमरीका के साथ मुजाकरात में मसरूफ हैं और शायद किसी मौके पर उनसे मुलाकात भी हो जाए. उधर एक ईरानी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि अगर इत्तेफाक हो गया तो अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU 4 मरहलों में नाफिज किया जाएगा. वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी. दूसरी जानिब KP असेंबली के नाराज अराकीन ने कहा है कि इमरान खान से मुशावरत न हुई तो बजट पास नहीं होने देंगे. उधर बजट तजावीज पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात बरकरार हैं जबकि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी कराई है कि बजट इजलास से कबल कोई अहम कानून साजी नहीं होगी. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल लाहौर में खेला जाएगा. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
3: खास खास खबरें जुबैर दिन साहब के लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबता के नंबर 416-593-0003. गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 199.10 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान में MCB की 1100 से ज्यादा ब्रांचेस हैं. डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए, वहाँ अकाउंट नहीं है. कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondalbrothers.com पर आप लॉगिन हो जाइए. पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप यहाँ से डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं. आज का रेट है 199.10. कॉल कर लीजिए 905-306-0000. वेंसडे है आज. राजीव तलवार साहब मॉर्गेज के हवाले से मालूमात आप तक पहुंचाएंगे. आयशा मनवर साहबा डेट कंसल्टेशन के हवाले से गुफ्तगू किया करती हैं. इंश्योरेंस की मालूमात विशाल त्रिवेदी साहब हमारे साथ हुआ करते हैं. ICC इमिग्रेशन से MD भाई से आपकी मुलाकात करवाएंगे. कनेडियन इंग्लिश एयरलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद हमारी बिना आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए आप हमारे साथ रहना है. अब से 9 बजे तक मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ. मेरे चिर भाई सामीन, सोचने का मकाम है. रेल गाड़ियों को देखें, खचाखच भरी हैं. परदेसी आ रहे हैं, जा रहे हैं. हज़ारहा बसें हर वक्त जो हैं हम सफ़र हैं. वहाँ भी परदेसी आ रहे हैं, जा रहे हैं. हवाई जहाज में आप मिले तो बुकिंग नहीं मिलती है, टिकट नहीं मिलती है. या अल्लाह, तमाम मुसाफिरों का कौन सा देश है, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं. आप हाईवे पे हों, एक तरफ आपको वाइट या थोड़ा सा आप कह लीजिए कि एक तरफ रेड लाइट्स जा रही होती हैं, एक तरफ से जो है वाइट लाइट्स आ रही होती हैं, येलो लाइट्स आ रही होती हैं. पता नहीं कहाँ ये कौन से देश के मुसाफिर हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं. आज की अगर बैनुल्अक़वामियत को देखें तो देश का तसव्वुर तो रद्द होकर रह गया है. हम किसी भी देश के शहरी नहीं हैं, शायद हम दुनिया के रहने वाले हैं. सभी परदेसी हैं, वतन में भी और वतन से बाहर भी. हमारे सियासतदान भी सब परदेसी हैं. किसी की किताब किसी मुल्क में छपती है, किसी की इंग्लिस्तान में. अपने अपने देश में नहीं, अपने अपने देश में सिर्फ सियासत परवरिश पाती है. बैरूनी ममालिक में भी और वापसी पे भी, बाहरें साथ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब मौका मिलता है कहीं भी तो ऐसी मौका पर हस्ती होती है कि लोटा क्रेसी नज़र आती है. परदेसियों के भी क्या ठिकाने हैं, जाने कब क्या हो जाए. लंदन में बैठ के देसी लोगों की प्लानिंग करते हैं देश के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने परदेश में. अजब हाल है, परदेसी परदेश है. लेकिन सबसे ज़्यादा हसरतनाक हालत उन परदेसियों की है जो कस्बे माश के लिए बाहर गए हुए हैं, बैरून मुल्क गए. इन अजीज़ान के इंतज़ार में यहाँ परदेसी हैं, वहाँ वो परदेसी हैं. दौलत के हफ्ज़ ने जुदाइयाँ पैदा कर दी हैं. पैसा आ रहा है और उम्र बीती जा रही है. हालात बेहतर करने की तमन्ना ने हालत ही ख़राब कर दी है. ख्वाहिशात का फैलाव, नुमाइश की ख्वाहिश, आराइश की तमन्ना ने मजबूर कर दिया है कि अपने महबूब बेटे, महबूब खामिंद को वतन से बाहर भेजा जाए. अब घर में इंतज़ार है, कभी पैसों का, कभी फ़ोन का, जिसकी खातिर घर सजाया वही घर में नज़र नहीं आ रहा। हैरत भी और अफसोस भी कि हम क्यों सादा ज़िंदगी बसर नहीं करते, क्या गरीबुल वतनी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। और बाज़ का तो ऐसा नुकसान होता है कि सारी उम्र जो है उसके लिए पछतावा रहना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ जाता है, और बाज़ औक़ात वालिदैन भी। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट है दोस्त अरशद भट्टी हूँ।

0: Rudapaksha on Toronto CMR 101.3 FM. Students, we're up taking number 416-593-0003. 24 hours, we're on Rudapaksha.fm. Facebook, we have a page, Rudapaksha Toronto. If you like it, tune in. We have a program available. Phone, please listen to 647-506-0003. We call and listen to our program. हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी तमाम आईपीटीवी बॉक्सेस जादू बॉल जोन बॉक्स के साथ साथ एप्पल टीवी अमेज़न फायर टीवी रोकू टीवी के साथ साथ टूबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी आप हमारा निशान देख सकते हैं. हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप स्टोर पे जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी. एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारे पास फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 एंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशान भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं. आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशान अब आप हमारे टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी पे लाइव भी देख सकते हैं, यानी 7 से 9 बजे रेडियो पे भी सुनिए और हमारे टीवी चैनल टोरंटो 360 टीवी पे भी लाइव देखिए. रियल सेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तलाम भट्टी 647-295-7861. घर खरीदना, बेचना, लीज करना, साइन करना, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए. अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे. जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी. डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए तलाब भट्टी 647-295-7861 647-295-7861. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी हूँ.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
0: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information, call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663 Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.
2: अपने मकान की next month closing है, कुछ सोचा है टीवी और appliances कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range और microwave सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही reasonable price पे।
2: Sale तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए next month।
3: आज के rate हम lock भी करवा सकते हैं।
2: That's wonderful।
3: वहाँ से cell phone और India भेजने के लिए 220 volt का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: Brampton में ये कहाँ पे है?
3: On Bovet, just west of McLaughlin, telephone 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
0: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पे तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, it's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.